हनुमान जी महाराज चुपचाप खड़े थे, पूछ रहे थे कौन समुद्र के पार जाए। जामवंत ने कहा पवन समाना का चुप साधिरा बलवाना, उठ खड़ा हो। हनुमान जी एकदम भूधराकार शरीर, बोले क्या करूं, समुद्र को पी जाऊं या लंका उखाड़ करके आ रख दूं।

0: काल्पनिक दिन है।
1: मैं वायु देवता का औरस पुत्र हनुमान, मैं तीनों लोगों के स्वामी अमित तेजस्वी रघुकुल शिरोमणि भगवान श्री राम का दूत, जिनकी भार्या सीता माता को तुम छल से हर लाए हो।
2: बस बहुत हो चुकी है अनर्गल बातें, इसकी पूछ चला दी जाए।
1: महाराज रावण, यह अंतिम चेतावनी है, नहीं तो मरने के लिए तैयार रहो। मैं स्वयं भी तुम्हें मृत्यु दंड देने की शक्ति रखता हूँ, परंतु मुझे श्री राम की आज्ञा नहीं।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में सुबह के 7 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 7 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 8 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to रेडियो गाना and it's 9 AM in India. Keep listening to रेडियो गाना. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 10 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 11 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: का सर्जन? वो यहीं पर
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: ये कमबख्त याद ही तो तबाह कर देती है डॉक्टर साहब। उस गली से गुजर हुआ नहीं कि पलटना मुश्किल हो जाता।
1: फिर तो जरूर कोई ऐसी याद होगी जिसका वास्ता आपके दिल से होगा।

पर लैला मजनू शिरी और फरहा, इनका सच्चा इश्क जमाने को अब तक है यार।

यही है साहिबान कहानी प्यार की। किसी ने जान ली, किसी ने जान

रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 12 नून इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

देखो हाँ मायके नहीं तू मत मायके मायके मत जाइयो

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 1 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

कोई बचा ले। चूहा आगे पीछे बिल्ली पीछे बिल्ली चूहा आगे चूहा आगे पीछे बिल्ली पीछे बिल्ली चूहा आगे पीछे बिल्ली चूहा आगे। बंजरों का

बहन दीदी बन गई भोली, कुंडी खोली हंस के बोली, जाने तमन्ना अंदर आओ, पहले तो कुछ खाओ आओ, फिर बिस्तर पे होंगी बातें, बड़े प्यार से कटेंगी रातें। शौहर चौंका, भूले से मैं, ये किसके घर आ गया यार, मेरी बीवी मुझे कभी भी दे नहीं सकती इतना प्यार।

माफ कीजिए, मेरे साथ जरा इंसाफ कीजिए, मुझको अपने घर जाना है, वरना बीवी फिर मारेगी। उस दिन बीवी होश में आई, बंद हो गई सारी लड़ाई, नफरत हारी उल्फत जीती, लुटी खुशी फिर लौट के आई। अरे नफरत हारी उल्फत जीती, लुटी खुशी फिर लौट के आई। आई रे आई रे आई रे आई रे आई, पीना छूट गया।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 2 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आप सुन रहे हैं भोजपुरिया धमाल आरजी सोनी के साथ सिर्फ रेडियो हॉटस्टार पर। भोजपुरी गानों की मस्ती और देसी अंदाज के साथ धमाकेदार मनोरंजन का रंग जमाइए और खूब एंजॉय कीजिए। अपनी पसंद के गानों को सुनने के लिए इस्तेमाल कीजिए रेडियो हॉटस्टार के सॉन्ग रिक्वेस्ट ऑप्शन का। अपनी फरमाइश भेजिए और अपने पसंदीदा गानों को बजवाइए। तो जल्दी से डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।

बहुत बहुत धन्यवाद बरुआ। और सच में आज हमारा भोजपुरी शो करे के बड़ा मन करता, और आज बहुत ही मजा आवेल बा आज के शो में। तो सबसे पहले गाना प्ले कर दिल जाओ, और ये इन लगले हमको भोजपुरी सीखे के मिल जाए है ना। फिलहाल गाना एंजॉय कर लीजिए। ओके।

0: से भोजपुरी धमाल में रघुवा सभी की एक बार फिर से स्वागत बाटे। और आज हमारा साथी मौजूद बानी आज अमन जी, तो आज तो बहुत मजा वाला बा का कि
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल भाई, आज तो हमरो बड़ा मजा आ गया कि एक से बढ़कर एक फरमाइश आ रहा बा। सभी दोस्तों से हम रिक्वेस्ट करम के प्लीज अपना अपना रोबरा फरमाइश सॉन्ग रिक्वेस्ट के माध्यम से जरूर करी। आज तो गर्दा मचा देगा एकदम,
0: और गाना सब भोजपुरी ही फरमाइश करी काहे कि हिंदी गाना के फरमाइश जोन बा हमें में नहीं प्ले कर सकत, तो जितना हो सके भोजपुरी गाना के फरमाइश भेजी।
1: जी बिल्कुल आपने सही कहा, तो यहां स्टार्ट करते हैं। आज किन के गाने से स्टार्ट किया जाए बताइए,
0: भोजपुरी में बात करें भोजपुरी सो बात।
1: अरे हम भुला जाइनु, हम भोजपुरिया नानू आवेला जी, प्रॉब्लम ही बात बा। हाँ कोशिश करे वाला के हार ना होकेला। ठीक बात, बताओ दिल जाए यानी के गाना पहले प्ले कर जाओ।
0: और पहला

0: एंजॉय करी लो।
1: ओके जी, कुछ बतिया कहे अखिया, गाना बहुत ही शायद प्यारा बहन जी, एंजॉय करी।

0: आप दोनों के और कैसन वाली लो तो बिल्कुल बढ़िया वाली जी हाँ बिल्कुल गुड आफ्टरनून होता लेकिन हो सकता था कि वहाँ घड़ी में इवनिंग हो चुका लोग
1: कोनो बात नहीं कभी खेला कभी कभी गलती से मिस्टेक हो जाला और यहाँ पे काजल झका जी भी जुड़ चुके बानी उनका भी बहुत बहुत वेलकम अगर काजल झका जी के फरमाइश बता कौन सा गाना बज रहा था पूछ लेना
0: तो काजल झा जी अगर गाना के फरमाइश बता गाना के नाम लिख के भेज दी फिर और वॉइस भी जॉन बा प्ले हो जाए
1: और हमारे साथ में जुड़ बनी यानी बीरबल बघेल जी बहुत बहुत वेलकम करत बनी बीरबल बघेल जी आपका भी और बागेश्वर निषाद जी बहुत बढ़िया बानी रौरा बताई कैसन बानी और साथ ही साथ हमारे साथ में जुड़ बनी सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं जरा सुन ले जाओ
2: आरजे सोनी जी आरजे अमन सर जी हम भी जुड़े हुए हैं
1: ओके वेलकम
2: हमारा भी हाजिरी लगा दीजिएगा बहुत अच्छा प्रोग्राम भोजपुरिया चलाए हैं अच्छा लग रहा है थैंक यू सर
1: वेलकम जी और साथ में हम इससे जुड़ल बनी अनिल कश्यप जी क्या कहते हैं जरा सुन लिया जाओ
3: आरजे सोनी जी और आरजे अमन सर जी आप लोग दोनों लोग मिल के कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे हैं आप दोनों लोगों को दो दो बार प्रणाम है और मैं अनिल कश्यप सिवान बिहार से जुड़ गया हूँ और बात भोजपुरी के बात भोजपुरी हमरो आदत नहीं है तो ना बोल पावे नहीं वैसे सोनी जी से बात भी होला जब तक हिंदी में बात होला तो इसे थोड़ा सा जुबान अभी टूटल नहीं है भोजपुरी में
1: थोड़ा बहुत
3: गलती हुई तो क्षमा चाहे बाकी प्रोग्राम मस्त चल रहा बा और प्रीति रैदास जी के जौन डिमांड रहा कुछ बतिया करी खिया बहुत ही अच्छा लागल है गाना हमू अपन डिमांड भेज दिले बानी और सुनतनी इंतजार में बानी जब हमार बात जब
1: जी बिल्कुल रेडी रही जरूर सुनवाल जाइए और अशोक देशमुख जी जुड़ चुके बानी बहुत बहुत वेलकम बा भोजपुरिया प्रोग्राम में साथ ही साथ हमारे आत्माराम पाटिल जी भी जुड़ चुके बानी बहुत बहुत वेलकम करता नहीं अगला गाना कौन सा प्ले करिए बताइए
0: अगला गाना राजेश कुमार जी के बात प्ले कर दूं राजेश कुमार जी के फरमाइश के
1: राजेश कुमार जी के गाना ये वाला है ना ठीक बात एंजॉय करिए राजेश कुमार जी सुनाओ तनी

ओके बहुत बहुत आप सभी के एक बार फिर से वेलकम बाय रेडियो हॉटस्टार भोजपुरिया धमाल में हमरा संगे और साथ साथ आरजे सोनी जी के संग। हाँ तभी तो लाइव चैट में बहुत से लोग बढ़ल जैसे कि हमारे यानी कि सुनील कुमार जी बानी और प्रियंका जी बानी, अनिल कश्यप जी बानी, रेनबो लवर जी बानी और धनेश मिश्रा जी बानी, सभी के वेलकम कर।

0: जी सर जी, नमस्कार नमस्कार।
1: अरे
0: और रुबीना नाथ जी लिखते यहाँ पे लिख रही हैं। अच्छा लिखा था नहीं, ओके जी घबराया तीन यार। हाँ तो रुबीना नाथ जी लिखा था नहीं कि अस्सलाम वालेकुम सर जी, गुड आफ्टरनून जी जी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत रोबा के भी वेलकम बा। और कहा था नहीं कि प्रोग्राम बड़का मतलब बड़ा नीमल लगा था। अच्छा जी थैंक यू सो मच, एंजॉय
1: करी। और यहाँ अनिल का सब्जी लिखा था नहीं कि रदास जी की तरफ से मैसेज कर लिखा था नहीं कि अनिल का सब्जी के धन्यवाद बोल दी, बिल्कुल बोल दिलवानी और हमारे सॉन्ग बाटे फीडबैक।
0: अच्छा जितना लोग फीडबैक दिलवे उनके खातिर थैंक यू बोला तनी, ओके बहुत बहुत शुक्रिया बार और भी। और अभिषेक तिवारी जी जो चक्रवाणी बहुत बहुत वेलकम करते बनी रोवा के भी हम। राजेश कुमार जी लिखा था नहीं कि थैंक यू अमन सर जी और आरजे सोनी जी हमारा गाना प्ले करने खातिर बहुत है बहुत। अच्छा अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि अच्छा वो ठीक बात जरूर और गाना हम प्ले करने की कोशिश करें। और ये क्या कहते हैं जरा ई सुन लिया जाओ।
2: हेलो
0: हेलो
2: आरजे सोनी जी, गुड आफ्टरनून। आज हमने आपका प्रोग्राम फर्स्ट बार ज्वाइन किया है जो कि आप भोजपुरी सॉन्ग लेके आती हैं। बाकी सॉन्ग तो बहुत अच्छे होते हैं पर हम लोग मतलब हमें थोड़ा सा कम समझ में आता है, लेकिन कुछ शब्द समझ के हम समझ जाते हैं कि ये सॉन्ग बहुत अच्छा होगा। बाकी आपसे पहली बार फीडबैक आपको मतलब हम पहली बार फीडबैक दे रहे हैं जो कि आपका ये जो सॉन्ग चल रहा है थोड़ा समझ में आया है, इसलिए बहुत प्यारा सॉन्ग है तो सॉन्ग सुनाने के लिए थैंक यू
1: जी। आपका भी मतलब रोवा के भी बहुत बहुत धन्यवाद बटे। और ऐसे ही सुनत रही थोड़ा थोड़ा करके एक बार पूरा समझ में आवे लगी। और भाषा भोजपुरी इतना भी मुश्किल नहीं है सीखे खातिर, अगर थोड़ा कोशिश करें तो जल्दी सीख जाए और गाना भी समझ में आवे लगी। फिलहाल यहाँ अगला फरमाइश एंजॉय करी रुबीना नाथ जी के।
0: बिल्कुल रुबीना नाथ जी आवे तो गाना बहुत नीमन नीमन लेके आवे, फिलहाल सुनाओ तो एंजॉय करी रुबीना नाथ जी ये गाना। और शायद फिर से दोबारा डाउनलोड करे पड़ सकता था क्योंकि कबो कबो गाना का हो खेला ना डाउनलोड ना हो पाएगा, बड़ा मुश्किल आजकल नेटवर्क हो गल बानू ऐसे प्रॉब्लम हो गल बा आजकल, लेकिन कोनो बात नहीं कि थोड़ा सा तो समय लगी और हो जाए। तब तक फिलहाल गाना प्ले कर लीजिए, ओके एंजॉय कर।

0: बहुत बहुत धन्यवाद अमन सर जी और सोनी मैडम, और गदगद हो गए गाना सुन के। चलिए तो ठीक
1: है। अच्छा सच में का जी, अब गदगद के होला हमर तनी के बुझा तनी हमरा के बता दे जाओ। रणवीर सिंह जेठालाल जी जुड़ चुके हैं, तो मतलब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद यानी कर रहा बानी। ओके जी, और ई का कहतनी अनिल कश्यप जी लिखत हैं बहुत नीमन लागल ई गनवा, बहुत बहुत धन्यवाद बा रुबीनानाथ जी के। और साथ में है एम डी फैज जी का कहतनी, जरा सुन लेल जा।
2: अस्सलाम वालेकुम भाई जान।
1: वालेकुम सलाम।
2: आपको और सोनी जी को भी बहुत बहुत प्रणाम। प्रोग्राम मस्त चल रहा है, मस्त गाना बज रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया एम डी फैज आलम हैदराबाद से।
1: बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा बानी रोबा के भी, और अरुण मंडल जी जुड़ चुके बानी उनका भी बहुत बहुत वेलकम भा। ओके जी, तो अगला गाना कौन सा सुना दे जा?
0: और अगला गाना भी काफी बढ़िया गाना के फरमाइश पहुंचल बाटे दिल्ली से धनेश मिश्रा जी के, तो चलिए एंजॉय कर जाओ धनेश मिश्रा जी के फरमाइश के, पिया जी के मुस्की।

0: अरे काश हमरो मुश्किल तनी बेजोड़ लागित हो तभी न मजा आई।
1: बिल्कुल क्यों ना क्यों के तलाक से हो ये मैं।
0: अब हम के मानी के कोई के लागत फिलहाल बहुत सारा फीडबैक आ चुकल बा शामिल कर तनी पहला तो है का कहते यानी प्रियंका जी सुनत तनी मैसेज तो खुलल बा।
2: सोनी जी ये सॉन्ग थोड़ा सा समझ में आया है कि इसमें शायद वो लड़की कह रही है कि गले लगा लो और अरमान पूरे कर लो।
0: हाँ।
2: ऐसा ही कुछ है ये सॉन्ग, थोड़ा थोड़ा आया समझ में, बाकी सॉन्ग अच्छा है। थैंक यू।
0: बिल्कुल आप ठीक समझनी है कि यानी गले लगाने की बात इसमें हो रही थी।
1: जी बिल्कुल, और ऐसे ही समझा समझा पूरा समझ में आवे लगी। फिलहाल यहाँ अगला मैसेज बाटे
0: बागेश्वर निशा जी के। तो बागेश्वर निशा जी लिखा था नी के निक लागल बहुते निमन गानवा जी सच में का। अनिल कश्यप जी लिखा था नी के धनेश मिश्रा जी के सॉन्ग तो बहुते अच्छा लागल बा सच में। और रुबीना नाथ जी लिखा था नी के अमन एंड मैम यानी गद गद हो जा रहा जब यानी मूड फ्रेश हो जा रहा। तो ओके समझ गए बहुत बहुत यानी शुक्रिया बड़ा बताए खातिर। और सुनील कुमार जी जो चक्रवाणी बहुत बहुत वेलकम करता नहीं बांका बिहार से। फिलहाल अगला डिमांड के लिए जा एक काम करता नहीं एगो फीडबैक बा हमारे आत्माराम पटेल जी के तुम सुन लिया क्या कहता नहीं
3: ऊंची नीची है डगरियो।
0: अच्छा गाने की फरमाइश बा
3: पतली है मोरी कमरियो हो बलम धीरे चलो जी।
0: ठीक बा प्ले करता
3: हूं बलम धीरे चलो जी। अमन सर जी और सोनिका जी बिल्कुल भोजपुरी गाना हमें पसंद है तो सुना दो।
0: okay.
3: अशोक पाटिल सरोज भगत जी सैयद विनोद जी और सभी अमन सर जी के साथ सुंदर ताकि मुरत को भी ये गाना।
0: थैंक यू सो मच सभी के लिए एंजॉय कीजिए।

0: ये सॉन्ग समझ में आया है, इसलिए इस सॉन्ग को तो मैं गाना चाहती हूँ। ऊंची नीची है डगरिया,
1: अच्छा
0: पतली है मोरी कमरिया, जरा धीरे चलो जी।

0: ओ बलम धीरे चलो जी, ये गाना समझ में आया है इसलिए हाँ, सुनाया है। थैंक यू।
1: ये गाना में हिंदी रहला मिक्स वैसे समझ में आ गया, हम समझता नहीं, एक वही फिर भी सुना जाओ।
2: अमन भैया नमस्कार, प्रणाम, मैं सुनील कुमार बांका बिहार से। असल में माना जाए तो भोजपुरी धमाल तो आज हुआ है।
1: अच्छा,
2: आपका और सोनी जी का जो मधुर आवाजें हैं और इस गाने को, इस प्रोग्राम को चार चांद क्या 10-12 चांद और लग जाते हैं इस प्रोग्राम में, और बहुत ही अच्छा प्रस्तुति दोनों को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
1: बहुत बहुत शुक्रिया भाई सुनील कुमार जी, बांका बिहार वाले, और साथ ही साथ भाई अशोक देशमुख जी, यहाँ के लिखत बनी के आत्मा पाटिल जी के पसंद हम लोग के भी अच्छा लगल सच में का। अगला डिमांड यानी के प्ले कर ये बताएं जा।
3: अगला डिमांड बाटे एमडी फैज आलम के, और दिल ना बिकाऊ हमारा, और प्रियंका जी
1: अच्छा लगल सच में।
4: और तो आज आप दोनों आए हैं, बड़ी मुश्किल से ये संयोग बैठा होगा।
1: अच्छा हाँ, बिल्कुल सही कहा।
4: तो आपके लिए एक सॉन्ग स्वाति मिश्रा की आवाज में है, ये दिल ना हमार बिकाऊ बा।
1: अच्छा,
4: साथ में सुंदरता की मूरत जी और सोनी जी, सभी रेडियो हॉट स्टार एंड गाना के दोस्त शामिल हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ठीक बा, तो सुनाओ तनी
4: हैदराबाद से।
1: लेकिन हम तो भाई खरीद कर रहे हैं, इंजॉय करी।

0: रिजर्वेशन में एक बार फिर से वो धमाल में और काफी खूबसूरत गाने का फरमाइश संदीप सर जी की तरफ से और यहां तरफ से वॉइस मैसेज पहुंचल बात चली सुना जाओ
1: का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का। एमडी फैज आलम हैदराबाद।
2: ओके जी, और साथ में और भी बा मैसेज हमारे आत्माराम पाटिल जी लिखा रहनी भोजपुरिया गाना सुन के तो बहुत अच्छा लग रहा बा सच में का। और काजल झकाज जी भी बहुत इंजॉय कर रहा बानी। फिलहाल अगला डिमांड इन कौन प्रोजेक्ट करेंगे बताइए।
0: और अगला डिमांड बाटे पूजा जी के तरफ से हो काफी खूबसूरत
2: गाना के सच में इस गाना में हमारा बहुत पसंद बा जान लेबू का हंस के गोरी सच में जान लेबू का इंजॉय कर रही है ये गाना के।

0: और काफी बढ़िया गाना के फरमाइश रहे अमन जी, तो काफी एंजॉय कहनी और इतरवा सब के दिखले होई सुनाई देलो होई दिखल तो ना होई लाल और यहां हाँ। काफी सारा फीडबैक पहुंचल बा।
1: अरुण मंडल जी क्या कहतन
2: आरजे अमन सर
1: जी,
2: आरजे सोनी मैडम, आप दोनों का आवाज कम आ रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिए।
1: ओके जी, फिलहाल तो आवाज बढ़ा देल बनी, उम्मीद करते नहीं कि आवाज अब ठीक आवे। और ये क्या कहते हैं सर्वेश भगत जी,
3: आरजे सोनी जी, आरजे अमन सर जी,
1: जी,
3: हम भी एक गाना भोजपुरी भेजे हैं, देखिए टाइम मिले तो बजा दीजिएगा।
1: बिल्कुल हम कोशिश करें राउर गाना बजाने खातिर। और है क्या कहते हैं सुनता नहीं।
4: वाह, एकदम जबरदस्त प्यारा गाना था ये, जान ले का हंस के गोरी, मजा ही आ गया एकदम। बहुत बहुत धन्यवाद एमबी फैज आलम हैदराबाद
1: जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया बार और भी। और काजल झका जी बहुत इंजॉय कर रहा बनी गाने के। और प्रियंका जी क्या कहत बनी सुन तनी।
5: अमन जी सारे सॉन्ग बहुत ही अच्छे चल रहे हैं जो कि भोजपुरी में हैं, हम लोगों को थोड़े बहुत समझ में आते हैं। पर आप प्लीज थोड़ा सा उसका हिंदी ट्रांसलेट बता दीजिएगा।
1: अच्छा,
5: क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनको नहीं समझ में आते होंगे, तो वो कम से कम थोड़ा सा तो समझ जाएं कि
1: ये जो
5: क्या गा रहा है।
1: अच्छा ठीक भाई,
5: तो जोन सॉन्ग सुनाने के लिए थैंक यू।
1: अच्छा, ये जोन गाना इन रहा ला नू कि जान लेबू का हंस के गोरी, माने यानी के कहे के मतलब कि राहुल हंसी इतना प्यारा बा, इतना नीमन बा, इतना नीक बा।
0: हिंदी में बताएं।
1: अच्छा हिंदी में बताओ। हाँ, माने इस गाने का मतलब था ना कि ये आप आपकी हंसी इतनी प्यारी है, मतलब इतनी खूबसूरत हंसी है कि ऐसा लग रहा है कि आप हंसिएगा तो मैं आपको हंसते हंसते देखता रहूं, ऐसा लग रहा है कि मेरी जान ले लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा फिलहाल ये फीडबैक।
6: बहुत ही नीमन गाना भाई, और जेकर फरमाइश रह लो करा के मतलब क्या कही हमने कि यहाँ कहा जला टोकरी या छैंटी भी कहा जला, तो वैसे एक छैंटी हम बधाई देता नहीं है गाना खाते।
1: ओके थैंक यू सो मच। और है क्या कहते हैं सुनील कुमार जी, सुनल जा
7: आरजे अमन सर, आरजे सोनी जी, मैडम जी को नमस्कार प्यार भरी। सुशील कुमार हरियाणा से बोल रहा हूँ मैं, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार,
7: आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा चल रहा है।
1: थैंक यू सो मच।
7: आज दिन में पहली बार आपके प्रोग्राम में शामिल हुआ। मेरी एक रिक्वेस्ट है, भोजपुरी सुन के या तो कोई मनोज तिवारी जी का हे राजा जी या गुड्डू रंगीला का कोई गाना एक सुना दी।
1: फिलहाल एगो हम गाना के सुना दी कि मेहरी आई रोब जलाई, इंजॉय करी गाना खाती फिलहाल। ना करे हम भैया, बिल्कुल ना करे हम।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो आपको दीवाना बना दे और रोड़ा सुन रहा बनी भोजपुरिया धमाल आरजे सोनी जी के साथ।
1: और अभी हमने क्या गाना सुने सन मनोज तिवारी की आवाज में, गाना के फरमाइश करने वाला रहे सुशील कुमार जी और काफी बढ़िया गाने के फरमाइश और यहाँ की तरफ से फीडबैक मैसेज भी पहुँचल बार लिखा था निकी वाह जी मजा आ गया जब आप अच्छा
0: ओके जी। और यहाँ पे यानी कि काजल झा काश भी बहुत ही इंजॉय कहनी है। अगला गाना कौन सा प्ले कर दीजिए बताइए।
1: और अगला गाना का फरमाइश पहुँचल बा मनीष जी के तो पे तो के केहू देखे लाते इंजॉय कर जाओ।

0: गोलू राजा के आवाज में गाना सुनने सन जॉन की गाना के फरमाइश करे वाला रही है मनीष जी और यहाँ काजल झा जी भी काफी इंजॉय कहने गाना के बहुत बहुत धन्यवाद बाकी और यहाँ दक्षा अंसारी जी जुड़ चुकल बानी बहुत बहुत स्वागत बाली खतनी की मजा आ गया गाना सुन के तो चलिए इंजॉय करिए और अगला फरमाइश जोन हमारा पास पहुंचल बाटे उससे पहले एक और यहाँ फीडबैक मैसेज पहुंचल बा तो चलिए सुनल जाओ का कहता नहीं।
1: हेलो अमन सर अभी जो गाना आपने सुनवाया भोजपुरी तड़का अमन सर जी बेहतरीन गाना लगा और अमन सर जी पूरा कार्यक्रम होने तक आप सिर्फ भोजपुरी में ही बात कर रहे बहुत अच्छा लगता है आप भोजपुरी में बात करते हो तो हमको बहुत बहुत अच्छा लगता है और अमन सर जी हर शनिवार का जो आपने कार्यक्रम रखा है भोजपुरी तड़का तो अमन सर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने इतना अच्छा निर्णय लिया आज मैं अभी सो रहा था लेकिन जो भी गाना मैंने सुना मेरी नींद उड़ गई है अमन सर जी और ये गाना मुझे बहुत पसंद आया इसलिए मैं फीडबैक दे रहा हूँ धन्यवाद
2: बहुत बहुत धन्यवाद और फीडबैक देवे खातिर अगला गाना कौन सा सुनाओ जा
0: अगला गाना भी काफी बढ़िया बाटे सुनील कुमार जी के फरमाइश बाटे बांका बिहार से हम है पिया जी के पतरी प्रिय तो एंजॉय कर जाओ
2: ये गाना बड़ा निक लगेला सच में

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे। आप सुन रहे हैं भोजपुरिया धमाल आरजे सोनी और
1: रमन जी के साथ। रमन जी बार बार भुला जाते नहीं कि आज भोजपुरी में बात करे के बाद।
0: सही बात बा, हम तो भुला जाते नहीं भाई कि हमारा भोजपुरी में भी बतियाए के बाद। कोनो बात नहीं के होला न कम कभी कभी मिस्टेक हो जाला गलती से। फीडबैक सुना जी जल जा का कहते हैं सर्वेश भगत जी।
2: आरजे सोनी जी, आरजे अमन सर जी,
0: जी जी
2: सुनील कुमार जी अपने गाने में शामिल कर लेना, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता नहीं। आप अपने के भी धन्यवाद दोनों आदमी के देता नहीं। थैंक यू।
0: ओके जी, धन्यवाद बाद और फीडबैक देने खातिर। और के कहते नहीं सुनील कुमार जी, क्या कहते हैं जैसा सुनील सुशील कुमार जी।
3: मजा आ गया गाना सुनकर। सोनी मैम तो कुर्सी से भी ऊपर उछल उछल के बोल रही है। बहुत ही मजा आ गया। अमन सर जी वाह वाह, शानदार प्रोग्राम।
0: थैंक यू सो मच,
3: शानदार।
0: थैंक यू सो मच
1: जी के वही जैसे दुख गेल बाटे।
0: हां सही बात बा। क्या कहते नहीं ये सुनील कुमार जी। हां हां ठीक है, इनका वाला प्ले कर।
1: अच्छा अगला वॉइस बटे अनिल का सर जी।
4: बहुते निमन गाना ई लागल ह पटना से पाकिस्तान मूवी के। और अमन भैया एगो बात हम कहे कि निरहुआ से तो अच्छा रहुए गावतनी।
0: सही में का
4: सही गावत रही और जब गावतनी तो बड़ा मजा आवता।
0: ओ माय गॉड, सच में का। जरा ही फीडबैक सुन ले जा हमारे सुनील कुमार जी का। इनका का कहतनी
5: अमन भैया और सोनी जी, आप दोनों का कोटि कोटि धन्यवाद है मेरी पसंद का गाना प्ले करने के लिए। और सभी दोस्तों का धन्यवाद करूंगा फीडबैक देने के लिए। मैं सुनील कुमार बांका बिहार से, और आपकी जोड़ी दोनों की ऐसे ही मिलके प्रोग्राम करते रहे। और मैं इच्छा जाहिर करना चाहूँगा कि आगे भी भविष्य में आप दोनों भोजपुरी धमाल को लेके ऐसे ही साथ में आते रहिएगा, ताकि प्रोग्राम में और भी चार चांद लग सके। और ऐसे ही दोनों प्रोग्राम करते रहिएगा। धन्यवाद
0: धन्यवाद ये और फीडबैक खातिर, बहुत ही निमन लागल और फीडबैक। और हमारे रणबीर लभर जी का कहते हैं जी।
1: लिखा तो नहीं कि हमारे गाना अभी तक ना बाजल, कब बाजी। बिल्कुल बाजी रहा और गाना के भी फरमाए।
0: बिल्कुल टेंशन ना ली, एकदम बाजी। अरुण मंडल जी का,
1: मंडल जी के तरफ से भी वॉइस पर सुना ली।
6: आरजे अमन सर
0: बोलिए,
6: हमने आपको मैसेज करके पूछा था कि फरमाइश ये कार्यक्रम में

0: से भेजे।
1: अच्छा अच्छा,
0: ऐप से भेजे, सॉन्ग रिक्वेस्ट से भेजे या व्हाट्सएप से भेजे?
1: जी आपको सॉन्ग रिक्वेस्ट से भेजिएगा।
2: जी बिल्कुल, सॉन्ग रिक्वेस्ट से ही गाना के फरमाइश करे के बाटे। और हम कहें कि अगर वॉइस में फीडबैक देता नहीं रोवा सबे, तो अगर भोजपुरी आओ तो भोजपुरी में ही दे, ताकि और भी बढ़िया शो हो जा,
1: प्रोग्राम खूबसूरत हो जी थोड़ा।
2: जी जी, और जेकरा भोजपुरी नहीं खाओ तो ओकरा से कोनो जबरदस्ती नहीं खे, लेकिन जेकरा भोजपुरी आओ तो कम से कम भोजपुरी में फीडबैक दे। और यहाँ काजल झाजी के तरफ से भी वॉइस मैसेज पहुंचल बस सुनल जाओ।
3: तोहरा में बसेगा जहां मैं रूपगा न मांगो, दिन रात रहे बसी तोहरे ध्यान
1: सच में का।

0: के पते भी तेरी है माँ। बहुत अच्छा गाना, थैंक यू।
1: हाँ, ये गाना हमरो बहुत पसंद बा। सच में जब गाना बजला न तो हमरा रोम रोम खड़ा हो जाला के भाई कोई हमरा खातिर कुछ कहता। काहे के हम बिल्कुल एने पातम न बानी वैसे ये गाना हमरा पर फिट बैठेला है। ई का कहते जा सुन ले जा।
2: हेलो अमन सर,
1: मैं
2: फिर एक बार मिसाल अंगद और अमन सर जी, आपने इतने अच्छे भोजपुरी गाने अभी तक क्यों छुपा के रखे थे?
1: अच्छा,
2: हमको सिर्फ हर बुधवार को ही गाने, कुछ गाने भोजपुरी सुनने को मिलते थे, लेकिन अमन सर जी आपने अभी निर्णय लेके हमको बहुत ढेर सारे गाने भोजपुरी के सुनने को मिल रहे हैं। अमन सर जी, मुझे भोजपुरी गाने बहुत पसंद आते हैं। और अमन सर जी, मैंने भी मेरा गाना सॉन्ग रिक्वेस्ट के माध्यम से आपको भेजा है। गाना अगर आपको मिल गया होगा तो अमन सर जी मुझे ये गाना जरूर सुनवाना।
1: ओके, लेकिन अभी तरह और गाना नहीं दिखाई देता हमार, पता ना किन्ने कर बात ढूंढो तनी, अगर मिल जाए तो जरूर सुनवा दे।
3: जी हाँ बिल्कुल, और कहम की जब भी गाने का फरमाइश करो तनी अच्छा अच्छा गाने का फरमाइश करी, कोई भी ऐसा गाने का फरमाइश ना करी जोना की वजह से गाने के बीच में बंद करे पड़ो।
1: सही बात बा।
3: और यहाँ
1: मुबारक हुसैन जी जो चुगलबनी, बहुत बहुत वेलकम बा भाई मुबारक हुसैन जी। और साथ साथ हमारे एमडी फैज जी का कहर बन लिखन, वाह वाह वाह, एकदम खूबसूरत गाना, मजा आ गया सुन के, धन्यवाद देतन भैया। अपन अगला गाना कौन सा सुना दे जाओ?
3: अगला गाने का फरमाइश बा सनी जी के, ले गल दिल।
1: अरे कहाँ ले गल दिल हमारी यार,
3: अब तो गाना सुन के ही पता चली कि दिल ले
1: गल। अच्छा ठीक बा, सुन जाओ।

0: धनिया वाली
1: आप तो लेके चल गए और गाने के फरमाइश करे वाला रनिया सनी जी काफी बढ़िया गाने के फरमाइश और यहाँ फीडबैक मैसेज पहुंचल बात सुन जाओ का कहता नहीं अनिल जी।
2: अमन भैया और सोनी जी दोनों लोग से एगो हमार प्रश्न बा कि आज के जौन प्रोग्राम चलता इ तो विशेष रूप से सोनी जी के ही है
3: हा, हा, बिल्कुल।
2: लेकिन एमे आज अमन भैया आईनी है तो आइडिया केकर रहला सोनी जी के आइडिया रहला कि अमन भैया के आइडिया रहला मतलब केकरा कहला के अनुसार ये काम आज के भइल काहे कि केहू भी लिसनर के पता ना रहला कि आज ऐसा भी होई काहे कि सिर्फ पता रहला सके सोनी जी ही आएं।
1: जी हाँ बिल्कुल पता तो ये रहला लेकिन हम सोचने कि आज लिसनर लोग के सरप्राइज दिहल जा और ये सोच के आइडिया हमरे रहला।
3: सही बात भाई बिल्कुल और भी फीडबैक बा तो ये शामिल कर लीजिए।
1: और यहाँ काजल झा जी के तरफ से बा लिखा तने अच्छा जी हाँ बिल्कुल और भी गाना बटे और हम तो भुला गए रनिया रुआ के बिल्कुल और फरमाइश बा प्ले करें फिलहाल थोड़ा वेट करें। और यहाँ देवपाल जी जुड़ल बानी और भी लिखा तनी क्या जी सोनी जी हमके भी गाना सुने के बा ओहो तो हम रुआ के बता दी कि मैं सिर्फ भोजपुरी गाना के ही फरमाइश कर सकता नहीं और भोजपुरी गाने का फरमाइश करें तो जरूर प्ले करें राहुल गाना तो हिंदी क्या बाटे तो हमने की प्ले कर सका था। और यहाँ राज सिंह जी के तरफ से मैसेज बाटे थैंक यू सर
3: और भी मैसेज बा उनका बहुत लंबा सा
1: और
3: लिखा था आरजे अमन सर जी और आरजे सोनी जी शो में जुड़े हैं और आप साथ में भोजपुरी सॉन्ग भी सुपर से ऊपर चल रहा है ओ थैंक यू सो मच।
1: और यहाँ आगे एक और मैसेज पहुँचल बा सुनील कुमार जी के वॉइस मैसेज बात सुनल जाओ का कहता नहीं आगे।
4: अमन भैया नमस्कार
3: और
4: सोनी जी को भी नमस्कार। मैं सुनील कुमार बांका बिहार से ऐसे छोटे मोटे पटाखे तो बहुत मैंने सुने थे हॉटस्टार पे फूटते हुए भोजपुरी नाम के लेकिन आज तो असलियत में एटम बम फूटा है भोजपुरी नाम का हॉटस्टार पे तो ऐसे ही दोनों मिल के एटम बम फोड़त रही आप दोनों के बहुत बहुत धन्यवाद बा
3: बिल्कुल जी हम फोड़त रहे हम घबराई मत रहो रहा एकदम
1: हमके लागत है सुनील कुमार जी के आज पता चला ला वैसे आज तीसरा वीक हटे और अगला फरमाइश के तरफ रुक के लिए और अगला फरमाइश जन बटे रेनबो लवर के तो एंजॉय करिए अपन गाना के ना चाहे सोना चाहे।

जरूर बताइए बताइए, इतना दिल टूटा आशीष काहे बोल भाई दौड़ा। सही में

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना दे। और सुन रहा बानी रोरा भोजपुरिया धमाल आरजे सोनी जी के साथ,
1: और साथ में आरजे अमन जी भी बानी।
0: वो तो हम नाम खा दीवानी
1: बिल्कुल बानी ना। और अभी गाना सुनत रहे सर, रेनबो लवर के गाना के फरमाइश रहे, और लिखा था निकी गाना प्ले अच्छा करवाए के कोई खास वजह नहीं के, और सुने के मन भैला यही से भेज देनी है। ओके, कोनो बात नहीं के, और मन हटे कभी कभी कर जाला कुछ और भी सुने के कोनो दिक्कत नहीं के। और आगे यहाँ अनिल कश्यप जी के तरफ से वॉइस मैसेज बात सुनल जाओ।
2: रेनबो जी के गाना तो बहुते निमन लागल है, और रेनबो जी के गाना के फरमाइश रहा ना चाही सोना चांदी ना हीरा मोतिया, हमरा के चाही बस उनके सूरतिया। तो सूरत तो सतरंगी दिखाई दी, काहे कि अगर तो खुद रेनबो बानी तो रेनबो में सात रंग होला, और सात रंग के सूरत देखेम देखेम भैया घबराए मत।
1: बिल्कुल सही बा। और यहाँ अगला मैसेज बा, वॉइस मैसेज प्रियंका जी के, तो सुनो जाओ का कहता नहीं।
3: अमन जी, ये सॉन्ग थोड़ा सा समझ में आया है कि अच्छा। ना चाहिए हीरा मोती और तेरा प्यार चाहिए, ऐसे कुछ है ये सॉन्ग।
0: सही समझ रही
3: हैं। तो प्लीज आप बताइए कि ये क्या गा रही हैं, और आप हिंदी में भी बहुत प्यारे सॉन्ग गुनगुनाते हैं
0: अच्छा।
3: और आपकी भोजपुरी में भी बहुत अच्छे
0: अच्छा।
3: सॉन्ग गुनगुनाते हैं, तो प्लीज बताइए कि ये क्या बोलना मांग रही हैं।
0: हाँ, ये बोल रही है ना कि ना चाहिए यानी हीरा मोती, ना चाहिए सोना चांदी, हमको कुछ ना चाहिए, बस मुझे आपकी वो प्यारी सी सूरत चाहिए जिससे मैं प्यार करती हूँ, या वो कहता है कि मैं जिसे प्यार करता हूँ, मतलब आपकी सूरत मुझे बहुत ही प्यारी लगती है, इसका मतलब यही हुआ मुझे और कुछ चीज की जरूरत नहीं है।
1: और गाना काजल झा जी भी काफी एंजॉय करनी। और अगला यहाँ मैसेज पहुंचल बाटे, और देवपाल मौर्य जी वानी और लिखा था नहीं कि दौलत के आगे प्यार की औकात ना रहे हो।
0: अच्छा, भोजपुरी गाना ठीक बा, कोनो बात नहीं के,
1: गाना के फरमाइश बा प्ले करे के कोशिश। फिलहाल ये अगला फरमाइश जोन हमरा पास पहुंचल बाटे, मेरा सिस्टम अलग है, प्राप्ति शर्मा के, तो एंजॉय करिए अपन गाना के।
4: मैडम, सुनी हो कि आप में एटीट्यूड बहुत है, नेचर में ईगो
0: अच्छा,
4: और बतिया भी रूड है।
0: ओहो,
4: लगता है किसी भोजपुरी के बड़े स्टार से मिल के आ रही हूँ। सुनो, मैं बताती हूँ।
0: बताओ बताओ।
5: अच्छों के लिए मैं अच्छी हूँ, कड़वी है जुबा पर सच्ची हूँ, उनकी हर चाल जमा के बहू ना समझे कि मैं बच्ची हूँ।
0: बड़ा खतरनाक बाड़ू।

0: ना बची देखे जवान होगी बड़ू ओहो ई बात बा बहुत अलग सिस्टम बा राउर हाँ हाँ बुझ गयी आगे बताओ
1: इतनी बड़ी बड़ी फिल्में हिट दी हैं इतने बड़े बड़े सॉन्ग्स हिट दिए हैं उसके बाद आप बड़े बड़े स्टार्स के साथ नजर नहीं आई ऐसा क्यों अरे किसी ने मना कर दिया होगा भोजपुरी इंडस्ट्री है बहन यहाँ पीठ पीछे बातें बहुत होती हैं

0: अच्छा जी, ये बात बा।
1: हो मेरा सिस्टम अलग है।
0: बहुत खतरनाक सिस्टम बराउर जी।
1: मेरा सिस्टम अलग है।
0: ओह।

0: ₹10 हक न जताती हूँ मैं, केहू और बन के न बतियाती हूँ मैं। अच्छा, मेरे भी अपने लाखों है, गुजरात से आती हूँ।
1: ओह माय गॉड,
0: जिस दिन मेरी भी मूवी 100 हो गई।
1: अच्छा,

0: ये बात है, बहुत ही खतरनाक सिस्टम बा राहुल। लेकिन बहुत प्यारा सिस्टम है।
1: मैडम, लगभग आपने सभी के साथ काम किया है, बाद में कुछ लोगों के साथ आप दोबारा दिखी नहीं।
0: मेरे साथ नहीं काम किया है।
1: अरे ये भी जानना चाहती हो?
0: हाँ
1: हाँ बताती हूँ।

0: तो यही लोग हैं ना। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने ही हिट कराया है।
1: ये लोग हिट कराए हैं, कोई किसी को हिट नहीं कराता। ये हमारी जनता, हमारी ऑडियंस हमको हिट कराती है। और हमें ही नहीं, सभी को जो बोलते हैं कि मैंने इनको हिट कराया और उनको हिट कराया।
2: अच्छा अच्छा
0: आप

0: ओ माय गॉड, ऐसा है?
1: अरे फुल ड्रामा, अंदर से कुछ बाहर से कुछ, बहुत बड़ा ये ठग है मेरा सिस्टम,
0: बहुत ही खतरनाक सिस्टम है भाई।
2: रवि अमनी का गाना सुनने सन प्राप्ति शर्मा जी के फरमाइश रहे, काफी बढ़िया गाना के फरमाइश।
0: हाँ, बड़ा नीमन रहा गाना, सच में मजा आ गया। इनका सिस्टम में अलग है एकदम, बिल्कुल
2: बिल्कुल। और यहाँ रेनबो लवर जी लिखा तनी की पूछे के ही रहे कि जो लोग बोल के मैसेज करता कहाँ से करता, तभी रोगा जहाँ से मैसेज कर ले बनी वही जो बगल में माइक के एगो आइकन हुई ओकरा पे क्लिक करें और रोजा से बोल के वॉइस मैसेज भेज सका था नी। और राजेश गौतम जी लिखा था नी कि गुड आफ्टरनून सोनी मैडम जी, अमन सर जी गुड आफ्टरनून। और आज आप दोनों लोग अच्छा एक साथ देख के सुनकर दिल खुश हो गए, तो चलिए बहुत ही बढ़िया,
0: थैंक यू सो मच,
2: स्वागत बटे रोगा के भी। और आगे यहाँ वॉइस मैसेज पहुँचल बटे अनिल कश्यप जी के तरफ से, सुनल जाओ।
0: क्या कहता नहीं,
3: प्राप्ति शर्मा जी के गाना बहुत ही अच्छा लागल है और वहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद वहाँ के सब श्रोता लोग शामिल कैले रहनी है जौना में हमहू रहनी है, तो एक खातिर वहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद ये गाना डेडिकेट करे खातिर।
0: हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया बार और फीडबैक देवे खातिर। और देवपाल मोदी जी क्या कहते हैं, सुन जाओ।
4: तो औरत के आगे प्यार की औकात ना रही, आर जे सोनी जी आर जे अमन जी मेरा गाना चलाने की कोशिश करें, धन्यवाद।
0: हाँ बिल्कुल, हम के कोशिश करम जा और टेंशन मतलब अगला गाना सुनी इन विशाल जी के, विशाल जी का सुनवा तनी तो
2: एंजॉय।

0: का करी अब सपने देख पड़ी नू हकीकत में नहीं ख्याल सुनता ना
1: तू सपना हमें रोजे आवेलू कहियो हकीकत में आया ना वल करा
0: ओहो

0: ठीक बा, अगला गाना माहौल बना दिया जाला।
1: जी हाँ बिल्कुल, और अगला गाना जो हमरा पास पहुंचल बाटे काफी बढ़िया गाना के फरमाइश बा, ओकरा से पहले यहाँ कुछ मैसेज बा शामिल कर जाओ और राजेश गौतम जी के वॉइस मैसेज पहुंचल बा सुनल जाओ।
0: मत यहाँ के तो पूरा गानवे भेज ले बानी, तब तक थोड़ा टाइम लगी।
1: जी बिल्कुल, थोड़ा वेट करी और गाना के फरमाइश बा, तब प्ले करे के पूरा कोशिश बाटे। और यहाँ प्रियंका जी के तरफ से भी वॉइस मैसेज पहुंचल बा सुनल जाओ।
2: अमन जी, ये सॉन्ग में बोल रहा है कि शायद कि सपने में क्या आती हो हकीकत में आ जाओ।
0: हाँ, बिल्कुल सही समझी
2: है। और उसके आगे वो क्या गाया कुछ समझ नहीं आया, बाकी सॉन्ग बहुत अच्छा है, तो प्लीज बताइएगा कि वो आगे क्या गा रहा है। और इस तरीके से सुनते सुनाते सीखते आपसे पूछ के, सोनी जी से पूछ के भोजपुरी एक ना एक दिन तो जरूर आ ही जाएगी। थैंक यू सॉन्ग सुनाने के लिए।
0: आ जाएगी आपको भोजपुरी।
1: दिन के इंतजार बटे हमरा कि रोवा भोजपुरी कब आता, और बिल्कुल सही समझनी है, बस वह बात पे अपन जो का कह दुख पीड़ा व्यक्त करनी है और कुछ ना। और यहाँ बागेश्वर निषाद जी लिखा था कि बहुत ही सुंदर गाना। जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही सुंदर गाना रहे। और काजल झा जी भी काफी इंजॉय कहनी सैड सॉन्ग के। और अगला फरमाइश जोन बाटे काफी बढ़िया गाने के फरमाइश बा, और देवपाल मौर्य जी के तरफ से नीलकमल के आवाज में कमरिया डोले डोले इंजॉय करी।

0: बात बा
1: कहो
2: लागे मिजाज आज सही नहीं।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना दे। और सच में हमारे तो भाई कमलिया गोले गोले एकदम गोल मतलब डोल रहा बा, घूम रहा बा एकदम। गाना सुन के तो एकदम मजा आ गया। वैसे यानी कि फीडबैक सुन ले जा। ओके जी, तो बहुत सारा फीडबैक। पहले ये
1: एगो अच्छा छात्र उ ना होला जौन की अच्छा नंबर ले आवे। अच्छा छात्र के निशानी ये होला कि ओकरा में हर दिन कुछ नया सीखे के अच्छा, गुण होखे और सीखे के ललक होखे। और प्रियंका जी जौन जुड़ल बानी वहाँ के सीखे के कोशिश करतनी। और भोजपुरी भाषा, भोजपुरी तो भाषा ऐसा न कि जो इमे आ जाला वो ऐसा रंग आ जाला।
0: बिल्कुल सही बात।
1: वहाँ के सीखे के जौन ललक बा वो खातिर वहाँ के हम बहुत बहुत धन्यवाद दे तनी। और वहाँ के प्रयास करी, बहुत जल्दी वहाँ के सीख जाएँ। और उम्मीद बा कि बहुत जल्दी वहाँ के खुद से अपन फरमाइश ये भोजपुरिया धमाल में भेजें।
0: बिल्कुल भेजें, हमरो इंतजार ही वो दिन के।
2: और भोजपुरी से तो अच्छा कोनो भाषा ही ना लगेला। फिलहाल यहाँ प्रियंका जी के तरफ से भी वॉइस मैसेज पहुँच चुकल बा।
0: का कहता नहीं?
3: सोनी जी, अभी जो ये सॉन्ग चल रहा है काफी अच्छा है। आप लोग इंजॉय करते हैं उससे पता चलता है कि इसके बीट से कि ये काफी इंटरेस्टिंग सॉन्ग है, क्योंकि आप लोग बहुत खुश होके ये सॉन्ग सुनते हैं। बाकी हमें तो नहीं आते हैं ये सॉन्ग, लेकिन फिर भी मैं
0: आ जाएगा, आ
3: एक सॉन्ग जो बस थोड़ा सा आता हैगा कि दिल वालों के दिल का करार लूटने मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने। इतना बिहार मतलब वहाँ का नहीं सुने हैं सॉन्ग, बाकी आपके सॉन्ग अच्छे लगते हैं, उसकी धुन बहुत प्यारी होती है और मिलते जुलते धुन होती है सबकी, तो सभी सॉन्ग बहुत अच्छे चल रहे हैं। थैंक यू
2: जी, वेलकम। और अगला फरमाइश के तरफ से पहले यहाँ मैसेज बटे। और देवपाल मौर्य जी लिखा था कि आज सोनी जी आरजे अमन जी गाना बजावे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद बटे। रोवा के भी फरमाइश करे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद बा। यहाँ राजेश गौतम जी लिखा था कि जबरदस्त सॉन्ग माहौल बन गए अमर सर जी, और इतना प्यारा सॉन्ग के लिए भाई के धन्यवाद।
0: तो राजेश गौतम जी के पहले गाना बजा दे जाओ का, ये बात बजा दे जाओ इनके पहले गाना।
2: यहाँ के गानवा बा कहा, अच्छा यही
0: प्ले कर दे जाओ।
2: हाँ प्ले कर

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार। जो दीवाना बना दे, सच में गाना बहुत निक लागल भाई। राजेश गौतम जी, ये गाना सुनकर तो मजा आ गया। और अनिल कश्यप जी लिखा के सुपर सुपर सुपर सॉन्ग है। मजा आ गया। ओके भाई, तलोरा भी भोजपुरी बोली ना। और हमारे रेनबो लवर जी लिखा था नहीं के, यानी पहले तो हमके भोजपुरी ना आवत रहा, लेकिन यानी कि सोनी जी के हम मैंने प्रोग्राम में सुना सुना तो आवे लागल बा। अच्छा, ये बात बा, ये तो बहुत खुशी के बात बा।
1: लगभग दो साल लागल है सीखे में। और ऐसे ही प्रियंका जी भी सीख जाम जी। हाँ बिल्कुल, और कोनो भी भाषा अगर सीखे के आदमी चाह दे तो सीख ली।
0: और ऐसे भी आज यानी के शिक्षक दिवस आप सभी के यानी के शिक्षक दिवस के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं बा। और बस यानी सुनत रही लो और सीखत रही लो भोजपुरिया भाषा। भोजपुरी अच्छा लगी नू। और का कहते नहीं, अरुण मंडल जी लिखा था नहीं कि अर्जय सोनी जी अर्जय मन सर जी भोजपुरी में सभी गाने मस्त मस्त चल रहा बने। अच्छा ठीक है, थैंक यू सोच में। और क्या कहते नहीं प्रियंका जी,
1: प्रियंका जी भी कुछ तो भेज ले बानी सुनल जा।
0: हाँ
2: अमन जी,
0: जी।
2: हमें पता है कि आप स्कूल के एक टीचर हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले हैप्पी टीचर्स डे। और जो ये हमें भोजपुरी नहीं आती है, तो आप इसी तरीके से सॉन्ग सुनाते रहेंगे या सिखाते रहेंगे, तो शायद एक दिन हम भोजपुरी जरूर सीख जाएंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: और सोनी जी भी हमारी एक तरीके से टीचर ही हैं, वो हमें सिखाएंगी तो हम सीख जाएंगे। इसलिए आप दोनों को शिक्षा सॉरी हैप्पी टीचर्स डे, शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: so
2: और एक सॉन्ग और है जो कि हमें आता है थोड़ा सा।
0: अच्छा, बोला।
2: कि तू लगाए ले जब तू लिपस्टिक।
0: अच्छा।
2: हिलेला सारा डिस्को जिला टॉप लगे लू। शायद यही वो
0: सॉन्ग है।
2: लिपस्टिक का बहुत शौक है, तो प्लीज अगर आपको टाइम मिले तो इसकी एक लाइन जरूर सुना दीजिएगा।
0: तो इस सॉन्ग आप लिपस्टिक लगाते रहिए और सुनते रहिए रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे।
1: और पूरा कोशिश बा कि गाना जरूर प्ले हुई। फिलहाल अगला फरमाइश की तरफ बढ़ल जाए से पहले एक और यहाँ मैसेज पहुँचल बा। और
0: यहाँ पे राजेश गौतम जी लिखा नहीं हमारा गाना प्ले खाते, बहुत बहुत धन्यवाद बा। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया बा। रौरा भी इतना बेहतरीन गाना सुनाए खाते। अब्दुल जब्बार अंसारी जी जुड़ चुके बानी, बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। अगला गाना कौन सा प्ले कर लीजिए।
1: अगला गाना बा काजल झा जी के, एंजॉय करिए अपन गाना के।

0: वेलकम बा। और काजल झका जी गाना सच में बहुत निक लगला। ये यहाँ पे निकला जी जुड़ चुकल बानी बहुत बहुत वेलकम। अब्दुल जब्बार जी लिखा था निक अमन सर जी सोनी जी प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगल बा। और यहाँ
1: अमन
0: जी सर गुड इवनिंग।
2: योर प्रोग्राम फॉर यूट्यूब योर बायोग्राफी वाओ
0: थैंक यू सो मच।
2: नाउ आई नो अबाउट यू आई सेड व्हाट अ स्ट्रगलिंग वंडरफुल माय
0: थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच।
2: एंड वन थिंग प्रियंका शी इज नॉट अमेरिकन।
0: Yes.
2: She's Indian.
0: Yes.
2: Isn't it? Thank you. Bye-bye.
0: Okay, sir. Thank you so much for your valuable feedback. I'm so happy for this. And क्या नाम है हमारे राजेश गौतम जी लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर गीत लागल है। ये पहली बार हम सुननी है। ये गाना सुनने के मिलल बहुत ही खूबसूरत गीत रहल। मजा के सुन के बहुत बहुत धन्यवाद देते रहल बानी। और सुशील कुमार जी लिखा था सॉरी यानी कि सुशील कुमार जी लिखा था नी के अमन सर जी मुझे अभी मालूम चल है कि रौरा इंडियन के टीचर भी बानी। तो आपके टीचर डे के हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद देते नहीं रौरा के भी। अगला गाना
3: बिना देरी अगला फरमाई अनिल कश्यप जी एंजॉय कर।
0: अनिल कश्यप जी का गाना हाँ माई गॉड तब तो एंजॉय करेगा पड़ी हमारो।

0: बढ़िया बात बा।
1: दादे सुनो तू तबे नु कहती
0: हाय हाय हाय हाय हाय हाय
1: ना दिल दिले रहती ना गम
0: ले रहती
2: फायदा नहीं है अब तो दिल दे के गम ले लिया बा। फिलहाल अगला फरमाइश एंजॉय कर जा गुंजन सिंह की आवाज में गाने के फरमाइश बकरे बाद बाकी के फीडबैक और गाने के फरमाइश करे वाला अनुर अरुण मंडल जी
0: गाने
2: के अपन

0: मजा आ गई। वेलकम बार और रेडियो हॉट स्टार में जे दीवाना बना दे और आप सुन रहा बानी भोजपुरिया धमाल आरजे सोनी जी के साथ।
1: और बात भले अमन जी करत नहीं।
0: अरे हम तो तनी बस यानी कि टाइम पास करे खातिर आगल बनी नु।
1: वैसे दोनों को इसके साथे एंजॉय करत हैं लोग सब और यहां वॉइस मैसेज काफी सारा पहुंचल बाटे और यहां रेनबो लवर जी लिखत नहीं कि अमन सर जी हमार दिल तो ना टूटल रहे लेकिन अनिल भैया के दिलवा पक्का टूटल बगाना मस्त बजी। हां बिल्कुल हमके भी ऐसा नहीं लगा था और यहां अनिल जी के तरफ से भी मैसेज वॉइस मैसेज पहुंचल बा तो सुना जाओ का कहत नहीं है के।
2: आरजे सोनी जी और अमन भैया जी रउआ दोनों लोग हमरा गाना के बहुत ही इंजॉय कइनी है लोग तो वो खातिर हम बहुत बहुत धन्यवाद देम। और टूटा दिल आशिक तो अब का बताई हम कभी अगर गजल वाला प्रोग्राम जब चालू हुई तो कुछ कुछ बात हम शेयर करें जौन रानी आकांक्षा जी के द्वारा जब हुई तब
0: लेकिन
2: बस का करें दिल टूट गई बा और वो लागत है कि टूटले रही अब बादे में अगला जन्म में कहीं जुड़ के आई फिर से रिपीट होके
0: ना तो हम बताए के चाहते नहीं कि आज अर्जा कंचा जी के प्रोग्राम होके वाला बा यानी कि रात के 10 बजे जरूर सुने।
1: और जन ए जन्म में ना भाई अगला जन्म के जाना था कि अगला जन्म में आदमी कौन सी लेके बन के पैदा हुई। फिलहाल
0: सही बात है।
1: अगला वॉइस मैसेज प्रियंका जी के।
3: अमन जी ये सॉन्ग तो वो ही है ना कि तेरी आंखों का यूं काजल।
0: हाँ हाँ सही सही सही।
3: मन करे कोई घायल मुझे पल पल पल पल पल पल याद सताए तेरा रूप जिगर के धड़के आग लगा। इसको मतलब इन्होंने भोजपुरिया में
0: हाँ हाँ हाँ बिल्कुल सही समझ नहीं
3: चलाया है। बाकी हमें तो यही वाला आता है। बाकी सॉन्ग बहुत अच्छा हैगा और इतना अच्छा सॉन्ग सुनाने के लिए शुक्रिया।
1: बिल्कुल और यहाँ अगला गाना प्ले करता नहीं प्रियंका जी के एंजॉय करी लॉलीपॉप लगेलू।

0: वेलकम बाय कौन रेडियो हॉटस्टार जे दीवाना बना दे और बहुत सारे भोजपुरिया धमाल में एक से बढ़ के गाना के और सबके डिमांड आई लेकिन सभी के फरमाइश पूरा ना हो सकेला। ये खातिर हम सभी से माफी चाहतानी और आप सुन रहे बनी भोजपुरिया धमाल आर जे सोनी जी के साथ और बीच में हम आगल बनी कबाब में हड्डी
1: और यहाँ अरुण मंडल जी की तरफ से मैसेज बैठे लिखा था नहीं कि विजय लॉलीपॉप वाला गाना अच्छा बड़ा मस्त लगल चली बढ़िया बात बा और यहाँ फीडबैक तो बहुत सारा मैसेज पहुँचल बा शामिल कर जाए लेकिन अगला फरमाइश हम प्ले करें और यहाँ मैसेज कर ले बनी अभिषेक तिवारी जी की हमरो गाना बा सर जी हाँ बिल्कुल राउर गाना बात चली राउर गाना भी प्ले हो चुकल बा गंगरी गंगरी इंजॉय करी

0: सच में गाना बड़ा निक लगल भाई, जुगनी जुगनी पर फिर भाई मतलब यही पर बनल भाई गाना, लेकिन फीडबैक भी बहुत सारा आ चुकल बा। प्रियंका जी का कहते जरा सुन लिया।
1: शुक्रिया अमन जी, सोनी जी, जो कि आपने हमारी फरमाइश पूरी करी कि तू लगाईला जो लिपस्टिक, बिकॉज मुझे लिपस्टिक का बहुत शौक हैगा।
0: हाँ, लगाते तो रही, ये सॉन्ग
1: हम लोगों के यहाँ पे चलता है ये सॉन्ग।
0: अच्छा।
1: तो हम लोगों को बस ओनली इसका आगे की जो लाइनें होती हैं वही समझ में आती हैं, बाकी हम लोग इस सॉन्ग पे बहुत अच्छा
0: डांस
1: कर लेते हैं, बाकी उसके बाद वो क्या क्या गा रहा है उससे हमें मतलब नहीं है, बस हमें तो हमारी मस्ती में झूमना है। बाकी आपने हमारे सॉन्ग को सुनाया उसके लिए शुक्रिया तहे दिल से।
0: ओके जी, बहुत बहुत राउर वेलकम बा। फीडबैक देवे खातिर अनिल का सब जी क्या कहते हैं जी, जरा सुन लिया।
2: अमन भैया
0: बोली,
2: गाना तो इहो बहुते झकास चलत था लॉलीपॉप, लेकिन एगो बात कहे के हम चाहते हैं गजब इत्तेफाक बा। एक बार हम कहनी कि हेलो फोनिंग फरमाइश होखे के चाहिए, तो वो दिन रहुआ अनाउंस कहनी कि आरजे रत्ना जी आ रहल बनी कल से, और आज जब कहनी है गजल वाला प्रोग्राम के तो आज रहुआ कहनी है कि आज ही शाम से चालू होखे वाला बा।
0: बिल्कुल होखे वाला बा,
2: तो ये एगो इत्तेफाक बा और अच्छा लागल है जान के। और दूसरा चीज की सोनी जी कहनी है कि अगला जन्म में का पैदा हुई आदमी पता नहीं है, तो हम वहाँ से बिल्कुल सहमत बनी। हाँ। बट का करें, इंसान बनी तो इंसान फील करें कि इंसाने बनी हम फिर।
0: हाँ।
2: एगो बात बा, अगला जन्म में अगर हम इंसान बने ना तो पहले भगवान से प्रार्थना करें कि हम आरजे बनी, काहे कि हमारा आरजे बने के बहुत मन करेला और बहुत अच्छा कार्यक्रम सुने नहीं और हमरो भी कुछ प्रस्तुति देवे के मन करेला।
0: अरे तो हम रोड़ा के ये जन्म में आरजे बना दे, टेंशन मत ली। हाँ बिल्कुल,
3: यहाँ अगला फरमाइश बा से पहले कुछ मैसेज भी बा शामिल कर जाओ। और यहाँ राजेश गौतम जी का लिखा था नहीं कि दोनों सॉन्ग लाजवाब रहे। अच्छा चलिए बढ़िया बाटे। और अगला फरमाइश
0: ये एक फीडबैक बस नहीं प्लेयर कर ले जा का कहते हैं मिसाल अंगद जी।
4: हेलो अमन सर, अभी जो गाना आपने भोजपुरी सैड सॉन्ग सुनवाया तो अमन सर जी ये गाना ऐसा लगता था कि इस हीरो को पांच छह लड़कियां छोड़ के चली गई है।
0: अच्छा।
4: और उनके गम में ये गाना गा रहे हैं अमन।
0: अच्छा,
4: सर जी।
0: अच्छा,
4: आपके भोजपुरी भी सैड सॉन्ग बहुत अच्छे होते हैं, जैसे 90s के जो गाने थे ऐसा गाना अभी लगा मुझे अमन सर जी, बहुत अच्छा गाना लगा ये। और फीडबैक देने से मैं नहीं रोक पाया अमन सर जी, आप जिस प्रकार गाने को समझते हो तो अमन सर जी मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि आपके जैसे गाने को कोई समझता नहीं है। आप जिस प्रकार बीच बीच में बोलते हो, बीच बीच में ये करते हो हर गाने को, तो बहुत अच्छा लगता है और इसकी वजह से गाने की खूबसूरती और बढ़ जाती है।
0: अरे मिसाल अंगद जी,
4: धन्यवाद।
0: मतलब यहाँ बैठा मानी भोजपुरिया महारानी, मैंने भोजपुरिया के हम का ही कहीं पूरा भोजपुरिया महारानी है, यहाँ के नाम दिया गया भोजपुरिया महारानी। मतलब कोनो गाना फरमाइश हो कि भोजपुरिया में होगी, चाहे कोनो थीम हो को सच में, और कहाँ कहाँ से चुन के लिया के मतलब यानी विनरे बन जानी। फिलहाल
3: अगला फरमाइश बागेश्वर निषाद जी के, तो एंजॉय कर जा और काफी खूबसूरत गाने के फरमाइश भाई यहाँ की तरफ से भी।
0: बागेश्वर निषाद जी।

0: समय काफी कम बा और अगला फरमाइश की तरफ बढ़ल जाइए, उससे पहले यहाँ वॉइस मैसेज पहुँचल बा, सुनल जा।
1: अमन जी, अभी किसी ने एक सैड सॉन्ग सुना था, नाम तो हम भूल गए हैं कि उन क्या नाम था,
2: अनिल कश्यप जी।
1: बट वो ऐसा कह रहे थे कि उनको अगले जन्म में आरजे बनना है, तो वो तो इस जन्म में भी आरजे बन सकते हैं। बाकी अभी अभी के लिए तो सबसे बेस्ट बेस्ट बेस्ट जो आरजे हैं वो आप हैं।
2: अच्छा?
1: सोनी जी हैं,
2: थैंक यू सो मच।
1: आकांक्षा जी हैं, वंशिका जी हैं,
2: थैंक यू सो मच।
1: बाकी वो भी आरजे तब क्यों बनना, अभी भी वो बन सकते हैं आरजे। बट उनको गाने अच्छे सुनने चाहिए, वो ऐसा सेट सॉन्ग उन्होंने क्यों सुना ये समझ में नहीं आया।
2: वो एक्चुअली बता रहे हैं ना कि उनका दिल टूटा हुआ है।
1: जो आरजे हैं वो अमन जी हैं, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर तरीके से अपना प्रोग्राम प्रस्तुत करते हैं।
2: so much,
1: हम लोगों
2: so
1: को अपने मतलब गाना सुनाते हैं, गुनगुनाते हैं।
2: अच्छा।
1: तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू।
2: वेलकम जी, वेलकम जी, वेलकम जी। और अगला डिमांड इनका बजी
0: सुभाष तिवारी जी के बाद अगला डिमांड। और भैया
2: भैया उठाई बहनी
0: के डोली। हाँ।
2: अच्छा जी,
0: काफी खूबसूरत गाने के फरमाइश बात। चलिए सुना जाओ सुभाष तिवारी के मतलब फरमाइश पे
2: ई गाना। ओके।

0: वेलकम बैक बा, एक बार फिर से भोजपुरिया धवाल में हमरा साथे और आरजे सोनी जी के साथे रोरा एंजॉय कर रहल बनी भोजपुरिया धमाल के भोजपुरी के एक से बढ़कर एक गीत और एक गाना इतना हमरा मन पसंदीदा गाना इस बार तो हम जरूर प्ले करे वाला बानी अभी, लेकिन फीडबैक के बाद क्या कहते हैं अनिल का सब्जी सुनो तनी।
1: जहाँ दूगो पार्टी के आदमी रही ओइजा तो मतभेद हो जाए।
0: अच्छा,
1: और ऐसा ऐसा गाना बाजी रेडियो हॉट स्टार पर तो दिल में छेद हो जाए।
0: ओ माय गॉड,
1: भैया ये गाना बहुत ही अच्छा लागल और शायद सोनी जी के तो पता भी बा कि वो ऐसा ही हितई में आई रही और हमर दिल तूर के चल गई।
0: अच्छा,
1: और दूसरा चीज की उनका लैकन में मार ना भइल, बस वो हमरे के मार के चल गई।
0: ओ माय गॉड, ऐसा भी है? हाँ जी सोनी जी, आपने ऐसा किया है?
2: हम नहीं किया, मुझे हाँ। पता है ये बोल रहे
0: हैं। अच्छा, वो ये कह रहे हैं, हमें लगा कि आपको कह रहे हैं। फिलहाल ओके, तो अभी है बात
2: रात गई बात गई और अगला फरमाइश जो हमारे पास पहुंचल बैठे अब्दुल जवाब जी के, तो एंजॉय कर जाओ ये करेजा कहाँ जात बनी।
0: सच में ये गाना हमें बहुत निक लगेगा एकदम, ये तो गईबे करे हम एक करेजा कहाँ जात बड़ू करेजा निकाल के एंजॉय कर लिया गाना के।
3: रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर
0: सच में।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे और रसूल बनी भोजपुरिया धमाल आरजे सोनी जी के साथ और हम बीच में बानी थोड़ी तनी खाती फिलहाल बहुत सारे फीडबैक आ चुका हमारे पास की क्या कहते हैं प्रियंका जी सुन तनी।
1: अमन जी ये सॉन्ग मतलब समझ में तो आया है बट थोड़ा सा ये अलग टाइप का है
0: बिल्कुल
1: तो हम इसको सुना तो नहीं सकते हैं और ना बता सकते हैं क्योंकि इसके कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो मतलब थोड़ा अलग से हैं। बाकी ये सॉन्ग अच्छा था थोड़ा वो समझ में आया है लेकिन वो वर्ड्स हम बोल नहीं सकते हैं क्योंकि भोजपुरिया में जो वर्ड्स होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही कुछ अलग टाइप के रोमांटिक डीपली टाइप के होते हैं जो कि बोलना सही नहीं लगता है इसलिए
0: सॉन्ग
1: बहुत अच्छा था। थैंक यू सॉन्ग सुनाने के लिए।
0: वेलकम जी और बागेश्वर साहब जी लिखा रहनी बहुत बहुत धन्यवाद बा। अब्दुल जबारन साहब लिखते हैं हमारा गाना प्ले करे खातिर बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद बा। अगला गाना सुनवा तनी मनीष पांडे जी गोपालगंज से सुना तनी ए सोना बिल्कुल तो एंजॉय करी गाने के। ए सोना ए हमारा सोना

0: सही में
1: सावली सलोनी तू सलोना
0: हाय हाय हाय ए सोना
1: जुदा मत होना
0: बिल्कुल
1: होके जुदा नहीं रोना
0: हाय हाय
1: ए सोना जुदा नहीं होना
0: बिल्कुल
1: सोना जुदा नहीं होना
0: हाय हाय हाय क्या गाना है जी सच में ये गाना तो हमारा दिल ले लिया यार थैंक यू भाई पंडित जी ये गाना हमारा दिल की आवाज है ए सोना जुदा मत होना

0: है ए सोना जुदा नहीं।
1: वाह मजा आ गया। थैंक यू सो मच इस गाने के लिए भाई मनीष पांडे जी, इतना प्यारा गाना सुनवाया आपने, दिल खुश कर दिया आपने, मेरा फीडबैक भी आया हुआ है।
2: अमन जी ये सॉन्ग था कि ए सोना कभी जुदा मत होना, हाँ,
1: बिल्कुल, बिल्कुल
2: दिल में रहना, ऐसी कुछ ये सॉन्ग था। हाँ, हाँ। बट आप इसको थोड़ा सा हिंदी में जरूर इसका ट्रांसलेट करके बताइएगा। थैंक यू, सॉन्ग बहुत अच्छा चल रहा है, बट आप इसको जरूर थोड़ा सा हिंदी में ट्रांसलेट करके सुनाइए।
1: हम आपको बता देंगे, जो मन उनकी डार्लिंग है ना, जो उनकी जान है, मन उनका नाम है सोना, वो कहते हैं कि ए सोना प्लीज तू इन जुदा मत हो जाए, मन हमसे कभी तुम अलग मत होना, क्योंकि मैं हमेशा तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, यही उस गाने का मतलब है।
3: वैसे अमन जी ट्रांसलेटर तो बहुत ही बढ़िया वाने।
1: अच्छा ये बात बका।
3: और अगला फरमाइश एंजॉय कर जाओ, काफी खूबसूरत गाना बोलिया बोलेली
1: इन प्रदीप पंडित जी का।
3: जी जी
1: ओके जी, प्रदीप पंडित जी एंजॉय करिए दोबारा अपन गाना।

0: भोजपुरी धमाल में आरजे सोनी जी के साथ और हम बीच में बानी थोड़ा थोड़ा विद्रे खाती और फिलहाल फीडबैक आ चुकल बा। क्या कहते नहीं प्रियंका जी, सुन जाओ।
1: सोनी जी, अमन जी, प्रोग्राम बहुत ही अच्छा चल रहा है और अमन जी से जो हमने अभी एक क्वेश्चन करा था कि ये सोना मत खोना रोना, तो अमन जी एक क्वेश्चन आपसे था कि आपको कैसे पता कि उसके जो लवर है उसका नाम सोना है।
0: अरे गर्व में कहा तो नू,
1: सोना तो हम प्यार से भी बोलते हैं, जैसे कि सोना बाबू,
0: हम ये प्यार से कहते हैं ना,
1: तो आपको कैसे पता कि उसका नाम सोना है?
0: हाँ, वही
1: हो सकता है कि वो सोना बोल रहे हो। हाँ। बाकी आपने जो ट्रांसलेट करके बताया उसके लिए थैंक यू।
0: अच्छा जी, बहुत रौरा समझदार बनी। वैसे उहे मतलब रहला कि हम किसी को ये प्यार से जान, धड़कन, दिल, जिंदगी, प्यार सब कुछ बोलते हैं ना, वैसे यानी सोना भी बोलते हैं, सोना भी बोलते हैं जो मन में आता है।
2: फिलहाल अगला फीडबैक।
0: का बा?
3: कोयल के कूक से दिल में हुक बढ़ जाला।
0: सही बात बा।
3: और जब जब वो याद आवेली दुख बढ़ जाला।
0: ओ माय गॉड।
3: बट गाना तो एगो पति पत्नी कहल जाओ या प्रेमी प्रेमिका कहल जाओ, दोनों लोग पर ही फिल्मावल गई बात। तो अच्छा। गाना वो हिसाब से बहुत अच्छा बा,
0: बहुत बढ़िया बा।
3: और थोड़ा सा हमरा लायक ही नहीं खेल, लेकिन गाना बहुत बढ़िया बा। जेकर फरमाइश रहला वहाँ के हम बहुत धन्यवाद करतनी और वह दोनों आदमी के भी धन्यवाद करतनी गीत बजावे खातिर।
0: अच्छा जी, अब ऐसे तो 4:30 बजे प्रोग्राम खत्म करे के रहला, लेकिन अब लगता है 5 बज ही जाइए लगता है ना जी। वैसे बहुत सारा फीडबैक और बहुत सारा फरमाइश छूटे वाला बा, तो खातिर माफी चाहे।
2: टाइम की रघुआ लाए गाना काहे नहीं के, भाभी जी की आवाज काहे कोयल जैसा नहीं के काहे, जरूर बताएं।
0: हाँ बिल्कुल,
4: आरजे अमन सर जी, आरजे सोनी जी, बहुत बढ़िया प्रोग्राम चलाता, बहुत अच्छा अच्छा गाना बजाता,
0: धन्यवाद,
4: अच्छा लगा था, थैंक यू, इतना अच्छा गाना सुनावे के खातिर धन्यवाद।
0: सर्वेश भगत जी के ठीक है, प्ले कर दे जा।

0: भरी
1: चुलबुली
0: लाल होठवा पर ललचाई गई।
1: बहुत निक लगता। और बहुत बहुत वेलकम भी बा और सबके भोजपुरी धमाल में आरजे सोनी जी के साथ और बीच में हमू बनी तनी। और फिलहाल फीडबैक बहुत सारा आ चुकल बा। सर्विस भगत जी का कहता नहीं जरा सुन लिया। अच्छा अनिल कश्यप जी का कहते पहले इन्हीं का सुन लिया।
2: सोनी जी भाभी जी से लागत है कि आज मार करवाए लेकिन कहे के ई बा कि प्रेमिका कहला लो ना कि बहुत किस्मत वाली हुई जेकरा तू मिलब लेकिन पत्नी कह लालो नु कि तार से ब्याह करके कर्म फूट गए तो ई भी चीज के झुठलावल नहीं जा सकत। अच्छा। और अपने समाज में या घर परिवार अगल बगल दिखाई दे ही देला तो दोनों तरह से ई बात अगर देखल जाओ तो सही भी बा गलत भी बा लेकिन अब जिंदगी वे बा कि सकारात्मक रूप में जियल जाओ बस वे हमरो कोशिश रहेला। बस याद रहेला तो याद बता देनी शेयर कर देवे नी रेडियो पर।
1: थैंक यू सो मच।
2: कोनो खास बात नहीं है।
1: थैंक यू सो मच। हाँ जी अगला का कहते नी सर्वेश भगत जी।
3: आरजे अमन सर जी आरजे सोनी जी
1: बोली
3: बहुत बहुत धन्यवाद देता नी हमार गाना बजा देवे खातिर अपने प्रोग्राम में हमार गाना शामिल करे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद देता। थैंक यू।
1: अगला कौन सा गाना बाजी।
4: अगला गाना बा राहुल।
1: अच्छा एक और फीडबैक बतानी एक के एक सुन लिया। हां
5: अमन भैया और सोनी जी को मेरा प्रणाम नमस्कार।
1: नमस्कार नमस्कार।
5: आज सही में मेरा मन तृप्त हो गया है इन गानों को सुन के और ऐसी प्रस्तुतिकरण को देख के सुन के महसूस करके और लगता है मुझे आज दाल भात सब्जी बड़ी पापड़ का स्वाद मुझे आपके हॉट स्टार से ही मिल गया है।
1: अच्छा, अच्छा।
5: और मेरा पेट भर चुका है शायद मुझे शाम को खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपका आज हॉट स्टार के तरफ से जो ये गानों का हमें दावत मिला है ना बहुत ही लाजवाब। दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ दोनों को सोनी जी को और अमन भैया को।
1: थैंक यू सो मच।
5: धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच। अगला डिमांड इनको के बाबे
4: और अगला डिमांड से पहले यहाँ एक और मैसेज बा।
1: रणवीर सिंह जेठालाल जी लिखा था नहीं भोजपुरी गाना बहुत निक लागल। अच्छा जी बदबा
4: चली बढ़िया बात बा। और अगला फरमाइश भी बहुत निक बा। राहुल जी जुड़ल बनी मिरलीपुर से एंजॉय करें।
6: आमत रहे खुशबू मोहब्बत के आवत रहे
1: सही में
6: भगवान जिंदगी के हरे मोड़ पर नहिया के फूलवा
1: खिलावत रहे
6: परेशान।
1: अच्छा परेशान रहे ठीक बात समझ गई।

0: बिल्कुल। और यहाँ पे हमारे यानी कि यहाँ पे चैट बॉक्स में नागेश्वर धाकर जी का कहत बनी जी जा बताई तो
1: लिखा था नहीं कि पता नहीं था कि भोजपुरी सॉन्ग भी इतना धमाकेदार होला, वरना हम लॉलीपॉप भोजपुरी सॉन्ग निकाल के लई थी और हमें तो भोजपुरी सॉन्ग मिलल नहीं। आप ही हमें कोई भी सॉन्ग सुना दीजिए। तब बिल्कुल गाना सुनाए रुआ के बहुत बहुत स्वागत बटे शो में।
0: और बोले अगला गाना कौन सा प्ले करता नहीं रुआ?
1: अगला गाना जोन बा हमरा पास पहुंचल बा मनोज तिवारी की आवाज में बटे और गाने का फरमाइश करे वाला बानी हुकुम चंदा जी
0: जांगर जी। अच्छा ओके जी तो सुना दे जा
1: जी। बिल्कुल प्ले कर दे बानी एंजॉय करी।
0: सासुका

0: नहीं चल सकेलो?
1: ना बिल्कुल ना।
2: है
1: पावे पावे।

0: ओके तो ठीक बा। अब ये तो भाई गाना बहुत ही बढ़िया लागल, निक लागल, मजा आगल सुन के। और आज के आखिरी गाना प्ले कर दिया जाओ।
1: बिल्कुल। और यहाँ आज वंशिका जी लिखा था कि हम भी सीखत बानी, जल्दी बोलें। बिल्कुल इंतजार बा कि रउआ कब सीख के बोला तनी। बहुत बहुत स्वागत बाटे। और अगला फरमाइश और आखिरी फरमाइश जो रही और नागेश्वर धाकर जी के यहाँ के सुने के रहला, हमरा पसंद से बहुत सारी गाना। तो चलिए गाना प्ले कर दिल बानी, इंजॉय करी गाना। और ये गाना के साथ है दी जाए की इजाजत। फिर मुलाकात हुई अगला सैटरडे के दोपहरिया के 1:30 बजे।
0: हमरो के नहीं, हम मैम शाम के 6 बजे। बिल्कुल, मैंने सारे 6 बजे भी आ सकते नहीं, कोनो बात नहीं है।
1: अमन जी से तो डेली मुलाकात हुई भी करी, लेकिन हम सनीचर के फिर मिले दोपहरिया में 1:30 बजे। तब तक खातिर
0: बाय बाय,
1: नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।
2: तुमने बचपन से कभी हमसे ऊंचा आवाज बात नहीं किया। देखो महारानी को देखो।

दोपहर के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you. आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 5 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 5 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: तुम्हारे डैडी की मर्जी के खिलाफ हमारा इस तरह से और मिलना, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता।
1: कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम कैसे मिलते आए हैं मिलते रहेंगे।
0: फिर भी जरीन, आखिर वो तुम्हारे डैडी हैं, तुम्हारे लिए जरूर कुछ और सोच रखा होगा।
1: सोचने दो।
0: बुरा मत मानना जरीन, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी उठानी पड़े। और फिर ये भी तो सच है कि मैं एक मामूली घर का लड़का हूँ।
1: फिरोज, तुम मुझे प्यार करते हो।
0: लेकिन जरीन, सिर्फ प्यार से तो सब कुछ नहीं होता। तुम बड़े घर की लड़की हो, तुम्हारे डैडी
1: तुम मुझे प्यार करते हो।
0: फिर मेरे कॉलेज का यही आखिरी साल है, बीए के बाद और पढ़ भी नहीं पाऊंगा, पता नहीं कब कैसी नौकरी मिले। और
1: फिरोज, तुम मुझे प्यार करते हो?
0: प्यार तो करता हूँ जरीन, बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन
1: प्यार करते हो ना?
0: पर जरीन तुम,
2: तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे।

0: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार अंतरा मस्ती शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे संडे स्पेशल में सुनिए स्टार लेटर्स चॉइस और कीजिए दिए गए अक्षर से मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश सिर्फ रेडियो हॉटस्टार के ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना। बजाते रहो दिल से।
1: हाय, हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमन, आ चुका हूं लेकर बहुत ही प्यारा शो जिसका नाम है स्टार अंतरा मस्ती। बिल्कुल मस्ती करेंगे एक से बढ़कर एक गाने के साथ, लेकिन फिलहाल मेरे पसंद के गाने एंजॉय कीजिए और आते हैं इस गाने के बाद आप सभी का वेलकम करने हैं।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे और आप सुन रहे हैं अंतरा मस्ती। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमन और बहुत से दोस्त जुड़ते जा रहे हैं, सभी का वेलकम करते हैं। सबसे पहले जुड़ने वाले हैं हमेशा की तरह हमारे ये सरफराज भाई और यानी सरफू पटेल जी साउथ अफ्रीका से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं साउथ अफ्रीका से। और दीपक कुमार गायकवाड़ जी बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी, दीपक कुमार गायकवाड़ जी। और यानी खुशबू जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं खुशबू जी आपका। और बिल्कुल, और मुबारक हुसैन जी जुड़ चुके हैं भाई, बहुत बहुत मुबारक हो, आप जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। अजय भगत जी जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम है। साथ ही साथ सर्वजीत सेठी जी आपका भी वेलकम करता हूं मैं। और रणवीर सिंह जेठालाल जी सभी का वेलकम है आपका भी। और अशोक देशमुख जी आपका भी वेलकम करते हैं। और हमारे ये सुनील कुमार जी आपका भी वेलकम है। और राजेश कुमार जी आपका भी वेलकम करते हैं। साथ ही साथ मिसालंगा जी आपका भी वेलकम है। और जितने भी दोस्त अभी व्हाट्सएप पर चलते हैं, चूँकि आज का जो प्रोग्राम होगा वो व्हाट्सएप के जरिए ही होगा। और ये प्रियंका जी जुड़ चुकी हैं, आपका भी वेलकम है। काजल झका जी आपका भी वेलकम है। तो प्रोग्राम का आगाज करते हैं। और हाँ, ज्योति खटवड़ी जी आपका भी वेलकम करते हैं। और साजिया जी आपका भी मैं वेलकम करता हूँ। तो प्रोग्राम का आगाज करता हूँ और सुनवाता हूँ आज का ये पहला गाना। इस गाने से आगाज हो रहा है आज के प्रोग्राम का। और इस गाने के अंदर से आप शब्द लिख के भेज सकते हैं 9135841232 पे, यानी 9135841232 पे। इंजॉय द ट्रैक जो मुझे बहुत पसंद है। इसके दो राउंड आज भी होने वाले हैं, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड। तो ये फर्स्ट राउंड अभी शुरू हो रहा है।

बिल्कुल बहुत प्यार आया है तुम पे और यहाँ से शुरू हो रहा है अंतरा। तो इस अंतर में आए शब्दों से आप मुझे गाने लिखकर भेज सकते हैं 9135841232 पे यानी 9135841232 पे। बिल्कुल सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार अमन के साथ जो आपको दीवाना बना दे, दीवाना बना दे।

और बहुत से मैसेज भी मेरे पास आ चुके हैं। सबसे पहले ज्योति खटवड़ जी का मैसेज, सच में जब भी प्रोग्राम का आगाज होता है ज्योति जी एकदम नंबर वन पे आती हैं, एकदम एक नंबर में गाना लिख कर भेज देती हैं ज्योति जी। और यहाँ पे यानी कि सुनील कुमार जी, सुनीता गोप जी और पीकुरा जी, राजेश कुमार जी, ईश्वर लाल जी और प्रियंका जी, सर्वेश भगत जी और प्रमोद यादव जी, दीपक जी और एक साहब और भी जुड़े हैं, नाम तो मुझे नहीं पता। नंबर है 0444, तो नाम प्लीज जरूर बताएंगे। और यहाँ पे साजा जी भी हैं, तो फिलहाल कॉल लगाते हैं ज्योति खट्टर।

0: ज्योति जी आपका बहुत बहुत वेलकम है अंतराम मस्ती में, कैसी हैं आप? और हमेशा की तरह आप नंबर वन आ जाती है, कैसे है? आप कैसे इतना कर लेती हैं बताइए। नेटवर्क शायद आपका साथ नहीं दे रहा है। हेलो ज्योति जी, कोई बात नहीं। हाँ ज्योति जी बताइए।
1: हाँ बोलिए।
0: एक्चुअली आप हमेशा नंबर वन आ जाती हैं, वो कैसे एक ही बार में कैसे भेज देती हैं?
1: क्या मालूम लक्ष्य आ जाता है।
0: बिल्कुल, सबसे पहला देखा है, हमेशा आपका आता है, अक्सर आता है, मतलब फिर बाद में
1: नेटवर्क का इशू है।
0: हाँ अभी नेटवर्क का इशू तो लग रहा है मुझे भी, और बाद में क्या होता है कि आपका मैसेज नंबर वन पे नहीं आता है
1: जी, इसलिए वाईफाई नहीं है।
0: कोई बात नहीं, फिलहाल बताइए अंतर के शब्दों से कौन सा गाना चुन के लाई हैं। हाँ हाँ बताइए।
1: तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहेंगे,
0: तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, है ना? उदित ने अनुराधा पौडवाल की आवाज में इंजॉय कीजिए, सुनवा दिया। धन्यवाद,
1: थैंक यू,
0: वेलकम जी। और जुड़ चुकी हमसे क्या नाम है इनका, बबली अनजान जी, बहुत बहुत वेलकम है बबली अनजान जी आपका भी।

बिल्कुल। और यहाँ से शुरू हो रहा है अंतरा। इस अंतरे में ऐसे शब्दों से आप मुझे गाने लेकर भेज सकते हैं 9135841232 पे यानी 9135841232 पे। बिल्कुल सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार अमन के साथ, जो आपको सच में दीवाना बना दे। क्यों है ना,

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे। और मेरे पास सबसे पहला मैसेज पहुंचा हुआ है ईश्वर लाल जी का और सुनील कुमार जी का, ज्योति खड़वड़ जी का और सुनीता गोप जी का, जाकिर खान जी का, प्रियंका जी का, राजेश कुमार जी का, दीपक गायकवाड़ जी का, बबली अंजान कश्यप जी का। ओके जी, अच्छा गीता भी कश्यप, गीता कश्यप जी हैं और राजेश गौतम जी हैं, मिसाल अंगद जी हैं एंड सर्वेश भगत जी हैं, सर्वजीत जी हैं, मतलब बहुत से दोस्तों के मैसेजेस हैं मेरे पास, लेकिन कॉल तो लगाएंगे हम ईश्वर लाल मेहर जी को। ईश्वर लाल मेहर जी बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका, कैसे हैं? हेलो
1: जी, नमस्कार सर।
0: नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं भाई?
1: सर आप सबसे पहले तो आप सर सबसे पहले तो आपको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी।
1: जी सर,
0: तो कैसे हैं आप?
1: और अभी सर प्रोग्राम सुन रहे और रिमझिम बारिश हो रही।
0: अच्छा, बहुत दिन बाद जुड़े हैं आप, बहुत दिनों बाद, मतलब एक जमाना हो गया।
1: दो महीने ना, दो तीन महीने, दो महीने हो गए सर।
0: न ज्यादा हो रहे हैं, जहाँ मतलब जहाँ तक मुझे लग रहा है दो महीने से ज्यादा हो रहा है।
1: जी सर। हाँ सर, अपने जून के लगभग लास्ट जून में जुड़ा था सर।
0: अच्छा अच्छा
1: जी सर।
0: खैर कोई नहीं
1: सर, उसके बाद में क्या है कि घर पे खुद का ही मकान का काम चल रहा था।
0: अच्छा,
1: तो
0: अच्छा।
1: इसमें बिजी रहेगा जी सर, तो टाइम भी नहीं मिलता।
0: ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है होता है। तो अब मैं देख रहा हूँ कि आप मुझसे 18 यानी जुलाई को जुड़े थे शायद, है ना?
1: जी सर,
0: 18 जुलाई के बाद आज जुड़ रहे हैं। कोई बात नहीं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं हम आपका। तो बताइए, अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुनकर लाए हैं आप?
1: सर गाना,
0: हाँ हाँ बता दीजिए
1: सर, गाना है नजरों से कह दो प्यार में मिलने की।
0: बिल्कुल, सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए इस गाने को। धन्यवाद कॉल करने के लिए, सॉरी ये पार्टिसिपेट करने के लिए।

और यहाँ से शुरू हो रहा है अंतरा। इस अंतर में आए शब्दों से आप मुझे गाने लिखकर भेजिए 9135841232 पे, यानी 9534812 पे। इंजॉय कीजिए इस गाने को।

और मेरे पास बहुत सारे मैसेज भी आ गया है। सबसे पहले सर्वजीत सेठी जी का, ओके जी, और सर्वजीत जी के बाद है यानी प्रियंका जी हैं और सुनील कुमार जी हैं, रणवीर सिंह जेठालाल जी हैं, दीपक कुमार गायकवाड़ जी हैं, जाकिर खान जी हैं, सुनीता गोप जी हैं, ज्योति खटवाड़े जी हैं, मिसाल अंकल जी हैं, सर्वेश भगत जी हैं और श्याम जी हैं, राजेश कुमार, राजेश गौतम जी हैं और विष्णु चंद्र जी हैं। मतलब बहुत से दोस्त सुन रहे हैं, सभी का नाम लेना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिलहाल कॉल लगाते हैं सर्वजीत सेठी जी को।

0: सर्वजीत शेट्टी जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका अंतरा मस्ती में। कैसे हैं आप?
1: बढ़िया अमरसर जी, आप कैसे हो?
0: अरे हम तो बहुत ही झकास बिंदास फर्स्ट क्लास मजे में चकाचक गारंटी के साथ हैं एकदम।
1: जी जी सर, बढ़िया।
0: बताइए,
1: आपको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सर।
0: थैंक यू सो मच।
1: जी सर।
0: ओके जी, तो बता दीजिए आज आज मतलब अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुन के लाए हैं?
1: मुझे हक है।
0: बिल्कुल, मुझे भी हक है
1: तुझको जी भर के मैं देखूं, मुझे हक है। ये गीत सुना दीजिए सर।
0: बिल्कुल, और मुझे भी हक है मेरी पूरी अपनी सुंदरता के मुराजी को देखने का। ओके, एंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: जी वो इन चूड़िया गुनगुना के मेरा नाम ले रही है ना, वैसे फिलहाल मेरे पास फीडबैक बहुत सारे आए हुए हैं, सॉरी फीडबैक करूँ, मेरे पास मैसेज बहुत सारे आए हुए हैं और समुंदर सिंह जी जुड़ चुके हैं। वेलकम करते हैं समुंदर सिंह जी। तो सबसे पहले मेरे पास जो यानी कि मैसेज पहुंचा है वो है हमारे दीपक कुमार गायकवाड़ जी का, और ज्योति खटवड़े जी भी हैं, और यहाँ पे प्रियंका जी हैं, साथ ही साथ यानी कि पीकू राय जी हैं, सुनीता गोगी हैं, सुनील कुमार जी हैं, जागीर खान जी हैं, ईश्वरलाल जी हैं, और सतीश शर्मा जी, अनिल कश्यप जी हैं, सर्वजीत शेट्टी जी हैं, अजय भगत जी हैं, सर्वेश भगत जी हैं, विष्णु चंद्र जी हैं, मतलब बहुत से दोस्त हैं, और राजेश सोनी जी भी जुड़ चुकी हैं। आपका भी वेलकम करते हैं। तो सीधे कॉल लगाते हैं हम दीपक कुमार गायकवाड़ जी को। दीपक कुमार गायकवाड़ जी, अंतरा मस्ती में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है, खुश आमदीद, कैसे हैं?
1: बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत नमस्कार, और शिक्षक दिवस की आपको और सभी सुनने वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: थैंक यू सो मच, और आपको भी बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं
1: जी।
0: तो कैसे हैं आप दीपक कुमार गायकवाड़ जी?
1: बढ़िया सर,
0: एमपी वाले,
1: बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक नंबर।
0: एक नंबर जी, तो फिलहाल बताइए अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुनकर आए हैं?
1: धीरे धीरे आप मेरी जिंदगी में आ गए, पहले जा फिर जाने जा, ये गाना है सर। और एक बात और बोलूंगा मैं।
0: हाँ कहिए कहिए, एक नहीं दो कहिए।
1: आपके प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करना पड़ रहा है, या आपकी ऐप को चलाना पड़ रहा है?
0: मतलब ठीक है, क्यों क्यों क्यों?
1: नहीं नहीं, मतलब ऐप को भी चलाना पड़ता है पहले के जो भी प्रोग्राम, उसमें कमेंट वगैरह करने के लिए। तो अब जिन लोगों को नहीं आता है चलाना, वो अपने बच्चों को क्या कहते हैं? बेटा पढ़ ले, नहीं तो हमारी तरफ पीछे रह जाएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही कहा,
1: ये एक जोक सुना रहा था मतलब मैं।
0: हाँ मैं समझ गया आपकी बात, तो फिलहाल गाना सुनवाते हैं, एंजॉय कीजिए। धन्यवाद,
1: चलो बच्चे पढ़ने लगेंगे अब आपके प्रोग्राम सुन के।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इन्हें पढ़ना चाहिए
1: जी।
0: धन्यवाद।

ओके, तो यहाँ से शुरू हो रहा है अंतरा। तो इस अंतरे में आए शब्दों से आप मुझे गाने लिखकर भेजिए 9135841232 पे, यानी 9135841232 पे। सुनते रहिए रेडियो हॉट 104.5।

मतलब मैसेज मेरे पास आ चुके हैं। सबसे पहले मैसेज भेजने वाले कौन से दोस्त हैं? और ये प्रियंका जी, ओके प्रियंका जी, ईश्वर लाल जी, जाकिर खान जी, और सुनील कुमार जी, ज्योति खड़वाड़े जी, फिकू राय जी, सरोजी सरे जी, राजेश कुमार जी, सतीश शर्मा जी, राजेश गौतम जी, मिसाल अंगा जी, निशांत राय बोले जी, सरोज भगा जी, विष्णु चंद्र जी, और विभूति भूषण जी, मतलब बहुत से दोस्त। माई गॉड, फिलहाल कॉल लगाते हैं प्रियंका जी को।

0: बहुत बहुत वेलकम है प्रियंका जी आपका अंतरा मस्ती में, कैसी हैं आप?
1: मस्त चकाचक और बहुत खूबसूरत।
0: अच्छा अच्छा, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। फिलहाल बताइए अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुन के लाई हैं आप?

0: नहीं हो दिल है कि मानता नहीं।
1: बिल्कुल दिल मानने वाला है नहीं। फिलहाल गाना एंजॉय कीजिए। ओके वेलकम जी।

बिल्कुल दिल तो मानने वाला है नहीं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे अंतर के शब्दों से गाना लिखकर भेजने वाला जरूर है। फिलहाल जल्द से लिख के भेजिए मुझे 9135841232 पे अंतर के शब्दों से, इस अंतर में आए शब्दों से कोई भी गाना।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार, जो आपको दीवाना बना दे। बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं मेरे पास। सबसे पहले तो नीतू शरण जी, आरजे सोनी जी, और उनके बाद यानी कि सोनू गौतम जी और प्रियंका जी, ईश्वरलाल जी, नंदलाल जी, सुनीता गोप जी हैं, और ज्योति खटवाड़े जी हैं, पिकू राय जी हैं, अनिल कश्यप जी हैं, जाकिर खान जी हैं, राजेश कुमार जी हैं, मिसाल अंगद जी हैं, राजेश गौतम जी हैं, और काजल झकार जी हैं, सर्वेश भगत जी हैं, सरोजी शेट्टी जी हैं, बाबू ये विभूति भूषण जी हैं, और निशांत राय बोले जी हैं, और सुनील कुमार जी हैं, और विष्णु चंद्र जी हैं, बाबूलाल अंजन, मतलब बहुत से दोस्त हैं भाई। गॉड, कितना दोस्तों का नाम लूँ मैं। फिलहाल कॉल लगाता हूँ सीधे। नीतू शरण जी, आपका बहुत बहुत वेलकम है अंतरा मस्ती में। कैसी हैं आप?
1: हेलो
0: जी। हेलो, कैसी हैं नीतू शरण जी?
1: हाँ बताइए।
0: अरे मैं तो बता ही रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप कैसी हैं, ये बताइए पहले।
1: हम अच्छे हैं।
0: अच्छे हैं तो अच्छी बात है। ओके, तो अंतरा मस्ती सुन रही है ना?
1: हाँ, आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं।
0: थैंक यू सो मच। तो अभी बताइए अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुन के लाई हैं आप?
1: देखा है पहली बार साजन के आंखों में प्यार।
0: हाय, बहुत ही प्यारा गाना है सच में। अब जाके आया मेरे दिल बेचैन दिल को करार है ना। इंजॉय कीजिए।
1: हाँ, बेचैन दिल को करार
0: सुनवा दिया, धन्यवाद।
1: अच्छा

0: बहुत सारे मैसेज आए हैं और सबसे पहला मैसेज तो पहुंचा हुआ है काजल झक्का जी का, आरजे सोनी जी का, और प्रियंका जी का, जाकिर खान जी का, ईश्वर लाल जी का, सोनू गौतम जी का, ज्योति खटवर जी का, सुनीता गोप जी का, पीकू राय जी का, और हमारे ये सुनील कुमार जी का, दीपक कुमार गायकवाड़ जी का, राजेश कुमार जी का, अनिल कश्यप जी का, राजू ये राजेश गौतम जी का, सर्वेश भगत जी का, निशांत रायपुर जी का, विष्णु चंद्र जी का, सरोजी शरण जी का, नीतू शरण जी का, बाबूलाल अंजाना जी का, मतलब बहुत से दोस्त है। माई गॉड, फिलहाल कॉल तो हम काजल झक्कास को ही लगाने वाले हैं। बहुत बहुत वेलकम करते हैं काजल झक्का जी, काजल झा जी मतलब झक्का जी, कैसी हैं आप?
1: मैं
0: हाँ?
1: बहुत ही झक्कास।
0: मुझे पता था। अरे हम भी आप ही की तरह एकदम झक्कास हैं, झक्कास में झक्कास, एकदम चकाचक।
1: थैंक यू। करना भी चाहिए।
0: हाँ तो बताइए, आप प्रोग्राम सुन रही हैं?
1: जी जी सुन रही
0: हूँ। तो आप अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुन के लाई हैं?
1: हाँ, दिल में तुम्हें बिठा के करूंगी मैं बंद आंखें।
0: ओके, तो ये दिल में बैठा लीजिए और आंखें बंद कर लीजिए, गाना एंजॉय करते रहिए। धन्यवाद
1: जी। थैंक यू।
0: वेलकम जी।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना मैंने सच में एक गाना मुझे इतना प्यारा लगा ना, उस गाने को सुनकर मुझे ये गाना याद आ गया, तो सोचा गया क्यों नहीं आप सबके बीच में सुना दूं। फिलहाल मेरे पास सबसे पहला जो मैसेज पहुंचा हुआ है वो एक बार फिर से सर्वजीत सेठी जी का पहुंचा हुआ है, और सर्वजीत जी के बाद है हमारे यानी सोनू गौतम जी, आरजे सोनी जी हैं, और यानी प्रियंका जी हैं, एमडी फैज आलम जी हैं, दीपक कुमार गायकवाड़ जी हैं, ज्योति खड़वाड़ जी, मिशाल अंगा जी हैं, सर्वेश भगत जी हैं, सुनील कुमार जी हैं, सुनीता गोप जी हैं, आमना खान जी हैं, एंड इन विष्णु चंद्र जी हैं, रवि मोहाडे जी हैं, निशांत रायबोले जी हैं, गजानन सलोकार जी, मतलब बहुत से दोस्त हैं, सीधे कॉल लगाते हैं सर्वजीत।

0: जी सर वजीर सर जी, मुझे पता है आपके साथ कुछ इन परेशानियां हैं, उसके चलते मुझे आपको दोबारा कॉल करना पड़ता है।
1: क्या दिक्कत आ रही है सर?
0: जी उससे कोई बात नहीं है, मैं आपको हमेशा मैं दोबारा ही कॉल करूंगा, क्योंकि मुझे पता है आपकी परेशानी क्या है। अगर नहीं जानता तो कोई
1: सर,
0: बात
1: सिंपल कॉल कर देते हैं सर, सर सिंपल कॉल कर दीजिए।
0: अच्छा
1: सर,
0: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिलहाल तो मैंने कर दिया है। हाँ मैं इन सिंपल कॉल मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरा नंबर ऑफ है, मेरा मोबाइल चार्ज नहीं है ना, इसलिए वो ऑफ है, तो मैं सिंपल कॉल नहीं कर सकता और व्हाट्सएप कॉल ही कर सकता हूँ क्योंकि मैं कंप्यूटर से कॉल कर रहा हूँ। इसीलिए
1: जी सर,
0: अगर मेरा नंबर ऑन रहता तो मैं बिल्कुल आपको सिंपल कॉल इन नॉर्मल कॉल कर लेता, लेकिन मेरा मोबाइल ही ऑफ है, मैं कुछ मैं कॉल ही नहीं कर सकता, ये चीज़ है। फिलहाल बता दीजिए आप अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुन के लाए हैं आप?
1: जीने की तमन्ना हो तो मेरी जरूरत हो, मेरे ख्याल से तुम बड़ी खूबसूरत।
0: बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत हैं, जितनी तारीफ करें उतनी कम है, एंजॉय कीजिए गाने को।

और इस बार सबसे पहले मैसेज मेरे पास पहुंचा हुआ है आरजे सोनी जी का। ओके जी। और प्रियंका जी हैं, पीकू राय जी हैं, सुनीता गोप जी हैं, दीपक कुमार गायकवाड़ जी हैं, ज्योति खरवाड़ जी, अकबर खान जी, एमडी फैज आलम जी हैं, और यहाँ पे सुनील कुमार जी हैं, गजानन सलोकार जी हैं, आमना खान जी हैं, रवि मोहरे जी, सर्वेश भगत जी हैं, सर्वजीत शेट्टी जी हैं।

बिल्कुल, मेरे ख्याल से तुम बड़ी खूबसूरत हो, तो कॉल लगाते हैं सीधे आरजे सोनी जी को। वैसे बहुत से दोस्तों का मैसेज और बाद में आया हुआ है, लेकिन मैं उनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि फिलहाल कॉल लगा रहा हूँ।

0: सोनी जी आपका बहुत बहुत वेलकम है अंतरा मस्ती में।
1: नमस्ते, कैसे हैं?
0: एकदम झकास बिंदास फर्स्ट क्लास मजे में चकाचक ग्रैंडी के साथ, मतलब बहुत है, स्मार्ट है। बताइए, आप बताइए। हेलो हेलो हेलो हेलो, शायद नेटवर्क इशू है।
1: जी, मैं बाहर निकल गई।
0: हाँ हाँ, अब ठीक है, बिल्कुल। इससे पहले आवाज ही नहीं आ रही थी आपकी। बहुत बहुत आपका धन्यवाद बाहर निकलने के लिए, क्योंकि बिल्कुल आवाज नहीं आ रही थी।
1: क्या करें, मेरे घर में नेटवर्क ही नहीं रहता है।
0: नेटवर्क नहीं रहता है तो फिर आप मैसेज कैसे भेज रही हैं?
1: मुश्किल हो रही है, इसलिए तो इतना नंबर आया है।
0: अच्छा, ओ इसलिए देर हो जा रही
1: है।
0: जी जी जी, हम समझ रहे हैं, नेटवर्क के चलते आप यानी दो नंबर तीन नंबर पे आ रही है, नहीं तो एक नंबर पे आती है ना। कोई बात नहीं, बताइए आप यानी कौन सा गाना चुन के लाई हैं अंतरा के शब्दों से?
1: सारे लड़कों की कर दो शादी।
0: अच्छा, यानी बस एक को कवा रखना है ना?
1: जी हाँ बिल्कुल, जो मेरा हो।
0: ओके, फिलहाल मैंने गाना प्ले कर दिया, एंजॉय कीजिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।

ये भी गाना है ना, दो गाने हैं, एक यानी इंसानियत का है और एक वो था फिल्म का नाम तो दीवाना मुसानी का। लेकिन इन दोनों गाने का जवाब तो मेरे पास एक ही है कि मैं सेहरा बांध के आऊंगा, मेरा वादा है।

फिलहाल ये गाना थोड़ा सा सुनवाते हैं। और बहुत से दोस्तों के मैसेज मेरे पास पहुंच रहे हैं, जैसे कि सबसे पहले अकबर खान जी का नाम तो ले ही लिया है, ज्योति खड़वर जी और यानी कि दीपक कुमार गायकवाड़ जी, सुनीता गोप जी, गजन सलोकार जी, एमडी फैज आलम जी, रवि महड़े जी, काजल झक्का जी, सर्वेश भगत जी, सर्वजीत सेठी जी, विष्णु चंद्र जी, निशांत राय बोले जी, अजय भगत जी, मतलब बहुत से दोस्त हैं। फिलहाल सीधे कॉल लगाते हैं अकबर खान जी को।

0: अकबर खान जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत वेलकम है आपका अंतरा मस्ती में। कैसे हैं आप?
1: वालेकुम अस्सलाम, एकदम बढ़िया हूँ जी।
0: और क्या कर रहे हैं आप? तो अंतरा मस्ती के दिन ही आते हैं, बाकी दिन गायब हो जाते हैं। कहाँ रहते हैं इतना बिजी?
1: अरे क्या, अभी इलेक्शन चल रहा है राजस्थान में।
0: अच्छा, राजस्थान में इलेक्शन चल रहा है? ओ माय गॉड,
1: नहीं पता। अभी वार्ड मेंबरों के इलेक्शन चल रहे हैं नगर पालिका के।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
1: इसलिए क्या मैं भी थोड़ा इधर लगा हुआ था।
0: तो अभी अभी इलेक्शन हो गया कि अभी बाकी है?
1: नहीं नहीं, बाकी 11 तारीख को होगा।
0: अच्छा, 11 तारीख को होगा, ठीक है। तब तो यानी कि आज यानी 5 हो गया, 6 दिन बाकी है ना?
1: हाँ जी,
0: कोई बात नहीं। फिलहाल अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुन के लाए हैं आप?
1: किशोर दा का है जी,
0: बता दीजिए।
1: गुनगुना रहा हूँ थोड़ा सा।
0: हाँ हाँ बिल्कुल, नकी और पूछ पूछ
1: हो चेहरा।

0: तेरा नाम है क्या
1: जी? मुझे उनका नाम पता है, फिलहाल आप गाना एंजॉय कीजिए। मैं सुन जाता की मुझे बिल्कुल ये उनको डेडिकेट भी है।
2: धन्यवाद
1: धन्यवाद। ओके okay।

और जब मैं यानी सेकंड राउंड स्टार्ट करने वाला हूँ तो सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आप गाना सुनना चाहते हैं उसका भी नाम नीचे लिख कर जरूर भेजेंगे, क्योंकि यानी कभी कभी गाने डाउनलोड होने में समय लगता है, इसलिए आप लोग गाने का बोल अपने जवाब के साथ जरूर लिख के भेजेंगे प्लीज, चूंकि सेकंड राउंड स्टार्ट होने वाला है।

0: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार अंतरा मस्ती शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे संडे स्पेशल में सुनिए स्टार लेटर्स चॉइस और कीजिए दिए गए अक्षर से मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश सिर्फ रेडियो हॉटस्टार के ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।
1: दोस्तों, अब तक आप अंतरे के शब्दों से गाने के बोल लिखकर भेज रहे थे, लेकिन अब आपको अंतरे के बोल से गाने की पहचान करनी है और उस गाने के सही बोल लिखकर भेजने हैं, और साथ ही साथ जो गाना सुनना चाहते हैं उसके बोल भी अपने जवाब के साथ ही लिखकर भेजें इस मैजिकल व्हाट्सएप नंबर पर जो है 9135 84 12 32।
2: ओके जी, तो मैं गाना सुनवा रहा हूँ और इस गाने से आगाज हो रहा है आज का सेकंड राउंड, क्योंकि अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है।

0: और ये रहा आज का पहला सवाल।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा। आप जो इस तरह से तड़पाएंगे, ऐसे आलम में पागल हो जाएंगे। वो मिल गया जिसकी हमें कब से तलाश थी, जिस्म से रूह में हम उतरने लगे।
2: दोस्तों, आपने सुना अंतरा। अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दी दीवाना। बजाते रहो दिल से।

बिल्कुल, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं। और सबसे पहला मैसेज गजानंद सुलकार जी का, और प्रियंका जी का, सोनू गौतम जी का, मनीषा शर्मा जी का, आरजे सोनी जी का, और मिसाल अंगा जी का, दीपक कुमार गायकवाड़ जी का, पिकुरा जी का, अजय भगत जी का, निशांत राय बोलू जी का, रवि मोहर जी का, गोपाल परदास जी का, भागेश्वर जी का, आरती तिवारी जी का, महक जी का, और सर्वजीत सेठी जी का। अच्छा, महक जी ने तीन तीन गाने भेज दिए, ओ माय गॉड। और यानी कि देवपाल मोरे जी का, आमना खान जी का है, और यानी काजल झक्का जी का, विष्णु जी का, मतलब बहुत से दोस्त, माय गॉड, बहुत से मैसेज हैं। फिलहाल सीधे कॉल लगाते हैं गजानंद सलोकार जी को, उनसे बातें

0: गायन जी बहुत बहुत आपका वेलकम है गायन सुरकार जी, बताइए कैसे हैं?
1: नमस्कार सर जी।
0: नमस्ते।
1: बस मैं तो ठीक हूँ सर, आप कैसे?
0: हम तो बहुत ही झकास बिंदास फर्स्ट क्लास मजे में चकाचक ग्रांडी के साथ है।
1: प्रोग्राम भी बहुत अच्छा चल रहा है सर जी।
0: धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओके और बताइए तो गाना कौन सा है ये, आपने पहचान लिया गाना?
1: आपके प्यार में हम सवरने लगे हैं, और हाँ, वही गीत सुनवा दीजिए सर जी।
0: अच्छा यही गाना सुनना है, ओके एंजॉय कीजिए।
1: यही गाना सुनना
0: सुनवा दिया,
1: रास मिलता है।
0: धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: और ये रहा अगला सवाल।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा,
2: करके इशारा बुलाए जवानी, ऐसे लुभाना मुझे दीवानी, तेरे बिना है अधूरी कहानी, दूंगा तुझे मैं कोई निशानी, आजा आजाओ ना दिलबर जानी, जानी जाना ओ जाना, तू है ख्वाबों की रानी, अपना बनाऊंगी निगाहें तो मिला।
3: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दी दीवाना, बजाते रहो दिल से।

बिल्कुल आपके प्यार में हम समझने लगे हैं। मेरे पास जो जितना सही जवाब है सिर्फ मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। और सही जवाब में सबसे पहले ज्योति खटवड़े जी हैं, और हमारे इन सोनू गौतम जी हैं, रुबीना नाथ जी हैं, और प्रियंका जी हैं, सर्वजीत सेठी जी हैं, मनीषा शर्मा जी हैं, और इनका गलत है, इनका भी गलत है, और इनका भी गलत है, मतलब जिनका नाम सही था उनका मैंने नाम ले लिया।

0: कॉल लगाते हैं ज्योति जी को। ज्योति जी एक बार फिर से बहुत बहुत सेकंड राउंड में स्वागत है आपका। कैसी हैं आप?
1: ठीक हूँ, आप कैसे हो?
0: मैं तो बहुत ही झकास बिंदास फर्स्ट क्लास मजे में चकाचक लय भारी हूँ।
1: तब भी बात नहीं हो सकी हमारी।
0: हाँ,
1: आपको हैप्पी टीचर्स डे।
0: थैंक यू सो मच। तो बताइए जवाब क्या है?
1: हुस्न है सुहाना।
0: बिल्कुल, हुस्न है सुहाना इश्क का खजाना है ना, ऐसे कुछ कुछ गाना है। हाँ, आप क्या सुनना चाहेंगे?
1: हाँ,
0: आप क्या सुनना चाहेंगे?
1: मैंने भेजा है ना कौन सा?
0: आपने भेजा है उड़ते बादल से पूछूं।
1: हाँ वही।
0: ओके, सुनवा दिया। एंजॉय कीजिए।
1: हाँ,
0: धन्यवाद।
1: थैंक यू,
0: वेलकम। हाँ,

0: लेकिन मैं इस्तेमाल करना भूल गया था, यहाँ पे कर लेता हूँ।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा,
2: मेरी जान मेरी दिल पर मेरा एतबार कर लो, जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो तुम भी मुझसे प्यार कर लो।
3: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दी।

0: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार अंतरा मस्ती शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे संडे स्पेशल में सुनिए स्टार लेटर्स चॉइस और कीजिए दिए गए अक्षर से मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश सिर्फ रेडियो हॉटस्टार के ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना। बजाते रहो दिल से।
1: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना दे। बहुत सारे मैसेज मेरे पास आ चुके हैं। सबसे पहले सोनू गौतम जी हैं, आरजे सोनी जी हैं और यानी प्रियंका जी हैं और बिंदिया जी हैं, अंचल कुमार जी हैं, ज्योति खटवट जी हैं, रवि मोहर जी हैं, आमना खान जी हैं और रुबीना नाज जी हैं, देवपाल मौर्या जी हैं, राहुल पासी जी हैं, आरती तिवारी जी हैं और विष्णु चंद्र जी हैं, सर्वजीत सेठी जी हैं, सुनीता गोप जी हैं, अजय भगत जी हैं, अकबर खान जी हैं, काजल झका जी हैं, गोपाल परदार जी, अजय कुछ जी हैं, दीपक कुमार गायकवाड़ जी और मनीषा शर्मा जी हैं। और भी दोस्त हैं लेकिन उनका नाम मुझे नहीं पता है, फिलहाल मैं उनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि उनका नंबर सेव नहीं है। फिलहाल अगला मैं सीधे यानी कॉल लगा लेता हूँ यहाँ पे सोनू गौतम जी को। बहुत बहुत वेलकम है सोनू गौतम जी, कैसे हैं?
2: बहुत बढ़िया है सर, आप अपने बताएं।
1: मैं तो बहुत ही अच्छा हूँ और बहुत देर बाद आपका नंबर लगा है। क्या बात है, 2 नंबर से 3 नंबर से पीछे जा रहे हैं हम।
2: हाँ, पता नहीं क्यों जा रहे थे, अब लग गया नंबर।
1: तो नेटवर्क सही है ना आपकी तरफ का?
2: जी अब तो बिल्कुल झकास नेटवर्क है, अब तो हम दिल्ली में हैं।
1: ओह, तब तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, फिलहाल बताइए तो कौन सा गाना था?
2: दिल ने ये कहा है दिल से।
1: मोहब्बत हो गई है तुमसे, बिल्कुल मोहब्बत हो गई है
2: जी।
1: फिलहाल बताइए गाना जी, कौन सा सुनना चाहते हैं?
2: गाना अभी बताता हूँ मैं। बताइए। इसमें लिखा हुआ था कौन था, तेरा दिल मेरे पास रहने दे
1: जी। सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए।
2: ठीक है सर,
1: वेलकम जी।

0: फिलहाल ये सवाल सुनते रहिए।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा।
2: उमंगे लिखी हैं, जवानी लिखी है, तेरे दिल की सारी कहानी लिखी है, कहीं हाले दिल भी सुनाता है चेहरा, ना बोलो तो फिर भी बताता है चेहरा। दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना। बजाते रहो

और जितने दोस्तों का सही सही जवाब आया है मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। सबसे पहले रुबीना नाथ जी है, सही है इनका बिल्कुल, और उनके बाद प्रियंका जी इनका सही है, ज्योति जी का सही है, मनीषा जी का सही है, और राजेश कुमार जी का सही है, आरजे सोनी जी का भी सही है, और देवपाल मुरे जी का सही है, आरती तिवारी जी का सही है, सर्वजीत सेठी जी का सही है, और बिंदिया जी का सही है, और हमारे अकबर खान जी का सही है, और यानी कि गोपाल इन परदार जी का सही है, सुनीता गोप जी का भी सही है, MD5 जी का सही है, अजय भगत जी का हाँ सही है बिल्कुल, और आमना खान जी आपका भी बिल्कुल सही है, रवि महा जी आपका भी सही है, और अजय कुछ जी आपका भी सही है, राहुल शुभ जी सही है, और कुछ दोस्तों का गलत भी है तो यहाँ पे लिख के आ रही नो कॉल, तो आपको कॉल नहीं करेंगे तो फिर आपको गाना लिख के भेजना चाहिए था, नो प्रॉब्लम। तो अगला जो यानी प्रियंका जी को मैं कॉल लगा लेता हूँ क्योंकि आपने गाना लिख कर नहीं भेजा है, और उसके बाद यानी प्रियंका जी का नंबर था, प्रियंका जी को लगाते हैं।

0: बहुत बहुत वेलकम है अंतरा मस्ती में सेकंड राउंड में प्रियंका जी, और ये नंबर आपको इत्तेफाक से लगा है क्योंकि क्योंकि उन्होंने लिखा नो कॉल, तो नो कॉल में जब आप गाने के बोल लिखकर नहीं भेजेंगे तो कम से कम वहाँ पे तो अगर आपको नो कॉल चाहिए तो गाने का तो बोल लिखकर जरूर भेजना। अगर मैंने इस पर भी मैं ले रहा हूँ मतलब, तो कम से कम आपको मैं तो या हमें गाना कैसे मालूम चलेगा, या तो मैं आपसे फोन करके पूछ सकता हूँ ना, इसलिए
1: हमारी तो इच्छा पूरी होगी।
0: अच्छा अच्छा,
1: हमें था कि हमें मतलब एक बार और कॉल आए ताकि हम हमारा सॉन्ग बता पाए।
0: बताइए बताइए अपना गाना बता दीजिए मुझे प्लीज। हाँ, पहले उससे पहले जवाब बता दीजिए
1: क्या किताबें, हाँ सॉरी, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है,
0: पढ़ा है मेरी जान, नजर से पढ़ा है।

0: लिखी है। वैसे गाना कौन सा सुनना है बता दीजिए प्लीज।
1: बड़े वाली सूरत पे ये मरने वाले, दिखावे कहाँ थे वफा करने वाले।
0: गाना कौन
1: ठीक
0: सुनना
1: है,
0: है?
1: ओके, कोई ना। हाँ, जिनकी चाहत में अखियां

0: और ये रहा अगला सवाल।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा।
2: मैंने तो संभाले रखा था, तूने देखा दुपट्टा छूट गया। यूं अखियां मिला के अखियों से, परदेसी मुझे तू लूट गया।
3: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दी दीवाना। बजाते रहो दिल से।

और इस बार मेरे पास सबसे पहले मैसेज पहुंचा हुआ है आरजे सोनी जी का। ओहो, और सोनू गौतम जी हैं, और बिंदिया जी हैं, और देवपाल मोरे जी हैं, प्रियंका जी हैं, आमना खान जी हैं, रवि मोरे जी हैं, रुबीना नाथ जी हैं, और विष्णु यानी कि विष्णु चंद्र जी ना, इनका गलत है सॉरी, और यानी कि सुनीता गोप जी हैं, आरजे आकांक्षा जी हैं, और अजय कुछ जी हैं, साथ ही साथ जाकिर खान जी हैं, और दीपक कुमार गायकवाड़ जी हैं, और यानी कि गोपाल परिदार जी भी हैं, साथ ही साथ अजय भगत जी हैं, सर्वजीत शेट्टी जी, मतलब बहुत से दोस्त हैं, माई गॉड, राहुल यानी शुभ जी हैं, और गुड्डू जी हैं, फिलहाल कॉल लगाते हैं।

0: हेलो हेलो आरजे सोनी जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है सेकंड राउंड में।
1: जी धन्यवाद, बड़ी मुश्किल लगा सेकंड राउंड में फिर।
0: हाँ, बिल्कुल बहुत मुश्किल से आपका नंबर लग गया, लेकिन फाइनली लग तो गया ना।
1: जी, क्योंकि बाहर आके बैठे हैं इसलिए लग गया।
0: हाँ, चूंकि अंदर नेटवर्क का प्रॉब्लम है इसीलिए आपका आगे पीछे नंबर हो जा रहा है, लेकिन कोई नहीं, फिलहाल आप यानी कि मतलब आपका मैसेज आता है जल्दी, लेकिन क्या कहते हैं नेटवर्क आपको धोखा दे देता है, ये प्रॉब्लम होता है।
1: क्या
0: कोई बात नहीं,
1: कोई तो होना चाहिए ना धोखा देने के लिए।
0: जब आप बता दीजिए,
1: आएगा मजा बरसात का।
0: बिल्कुल बरसात का मजा तो आने वाला है अभी, यानी ये चल गया है, यानी सावन चला गया, भादो चल रहा है, तो बरसात अभी चल ही रहा है बिल्कुल। और पूरा बरसात का मजा, यानी पूरा भादो भर लीजिए। जी
1: नहीं नहीं अभी तो नवंबर तक चलेगा ही।
0: अच्छा चलेगा ना, फिलहाल इस महीना तो चलाइए खूब आराम से, सितंबर का पूरा।
1: जी जी बिल्कुल।
0: ओके, तो और गाना कौन सा सुनना चाहेंगे आप?
1: गाना का लिंक शेयर किए हैं, पिया तो के पैनी।
0: अच्छा, तो हम सुनवा देते हैं, एंजॉय कीजिए गाने को।
1: ओके धन्यवाद,
0: वेलकम। बहुत छोट गाना बात, 2 मिनट खाती।

0: हाल, ये रहा अगला सवाल। एंजॉय कीजिए, सॉरी बताइए जवाब।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा,
2: ना जानी कैसा एहसास है, बुझती नहीं है क्या प्यास है, क्या नशा इस प्यार का मुझ पे सनम छाने लगा।
3: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दी दीवाना।

मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं। सबसे पहले इस बार आमना खान जी हैं, आरजे सोनी जी हैं और सोनू गौतम जी हैं, ज्योति जी हैं, रुबीना नाथ जी हैं, सुनीता गोप जी हैं और प्रियंका जी हैं, दीपक गायकवाड़ जी हैं और रवि मोहड़े जी हैं, अजय भगत जी हैं, जागीर खान जी हैं। सीधे कॉल लगाते हैं आमना खान जी को।

0: आमना खान जी अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: और कैसे हैं? जी बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसी हैं? शायद नेटवर्क इशू है, फिर से दोबारा कॉल लगाना पड़ेगा। नेटवर्क इशू है शायद आपके? हाँ
1: जी जी जी
0: हो सकता है, बिल्कुल। तो मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
1: मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो?
0: जी मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और आपने कहा कि मुझे एप्लीकेशन से कॉल कीजिएगा, इसलिए मैंने आपको एप्लीकेशन से कॉल किया है।
1: जी आवाज़ आ रही है ना क्लियर?
0: बिल्कुल आवाज़ आ रही है, बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है। वैसे आपकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी है।
1: शुक्रिया जी। आप तो नंबर वन हो।
0: ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच।
1: आवाज़ के मामले में
0: अच्छा पता नहीं फिलहाल, ये बता दीजिए कि आप इसका जवाब क्या है?
1: कुछ कुछ होता है।
0: कुछ कुछ होता है जी।
1: हाँ कुछ कुछ होता है।
0: हाँ बिल्कुल सही जवाब है आपका। और आप क्या सुनना चाहती हैं?
1: मेरा सॉन्ग थोड़ा हटके आज। मेरे दिल का साज बन के लफ्जों में आ रहे हो तुम।
0: अच्छा
1: महरम मेरे, महरम मेरे।
0: ओके तो मैं सुनवा दूंगा ना?
1: हाँ जी
0: ओके, एंजॉय कीजिए, धन्यवाद।

0: और यहाँ पे अगला सवाल कर लेता हूँ क्योंकि
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा। तुझे नहीं देखूं तो जिया नहीं माने, हाल मेरा क्या है ये मेरा खुदा जाने। तुझसे मिलने जुलने के मिल गए बहाने, नजर मिली ऐसी कि बन गए फसाने।
2: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।

बिल्कुल मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं, और सबसे पहले मैसेज मेरे पास पहुंचा हुआ है नेहा जी का, उनके बाद बिंदिया जी का, रुबीना नाथ जी का, और अजय भगत जी का, और रवि महर जी का, और यानी कि श्याम जी का। तो मैं कॉल लगाता हूँ सीधे नेहा जी को।

0: आपका रेडियो हॉटस्टार में बहुत बहुत स्वागत है। नेहा जी, और कैसी हैं आप?
1: हेलो
0: हेलो।
1: हाँ जी,
0: रेडियो हॉटस्टार के अंतरा मस्ती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सेकंड राउंड में कैसी हैं आप नेहा जी?
1: बहुत बढ़िया, आप बताओ आप कैसे हो?
0: मैं बहुत ही अच्छा हूँ। और आप कहाँ से बात कर रही हैं?
1: दिल्ली से बात कर रही हूँ।
0: दिल्ली से हैं, ओके जी। तो दिल्ली तो बताइए नेहा जी, आज इसका जवाब बता दीजिए पहले।
1: यही बताया तो था मैंने, मैसेज किया हुआ है आपको, बोल के बताना पड़ेगा।
0: आप मुझे बोल के बताइए।
1: मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियां। हाँ, मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियां, यही है ना?
0: ओके, और क्या सुनना चाहती हैं बता दीजिए। अभी
1: मैं सुनना चाहती हूँ वो वाला सॉन्ग ही है क्या? एक सॉन्ग है, अब मेरे दिमाग में था, आपने एकदम से कॉल किया ना, एकदम से माइंड से निकल गया।
0: कोई बात
1: नहीं, थोड़ा टाइम ले सकती हूँ ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल, ले लीजिए।
1: वो नहीं,
2: मुझे दिखाना। मैं
1: जरा जरा जरा जरा जरा जरा चला दो,
0: जरा जरा
1: जरा जरा बहता है सॉन्ग मेरा नाशमी के नहीं, रुको बैरन चलेगा।
0: मैं जरा सा कंफ्यूज हो गया, कौन सा गाना प्ले करूं?
1: बैरन नहीं, रुको बैरन भी नहीं, वो बरसात। बरसात बहुत अच्छा सॉन्ग है। अभी वेग का है बरसात, अभी आया हुआ है रिसेंटली, अभी काफी चल भी रहा होगा।
0: तो मतलब एक्चुअली मैं जरा कंफ्यूज हो गया हूँ, ये रहना है तेरे दिल में फिल्म का गाना है?
2: स्पीकर पे
1: करना नहीं, बरसात मूवी का अभी वेट का एक नॉर्मल आपका लिरिक्स है, मतलब नॉर्मल गाना है जो एक वो निकला हुआ है।
2: बात करने के लिए कैसे कर रहा है? इससे बात कर
1: रहा है, नॉर्मल सॉन्ग।
0: ओके,
1: नहीं है
0: जहाँ वहाँ पे बोला। हेलो, वहाँ पे शोर हो रहा है,
1: उनसे बात कर लो
0: जी। हेलो, हाँ हेलो,
2: हाँ जी, अमन जी नमस्ते, मैं अजय भगत।
0: नमस्ते, अच्छा अजय भगत जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है अंतरा मस्ती में। मैं तो कंफ्यूज हो गया कौन सा गाना प्ले करूं, बहुत सारे गाने की डिमांड है और शोर भी बहुत ज्यादा हो रहा है।
2: भांजी बात कर रही थी आपसे, ठीक है?
0: अच्छा अच्छा अच्छा, वो आपकी भांजी है
2: नेहा भगत का। मैंने जोड़ा गाना है तन्नो है।
0: आपकी आवाज नहीं आ रही है थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में, प्लीज। आपकी आवाज नहीं आ रही है नेटवर्क एरिया में, आइए प्लीज।
3: हेलो,
0: हाँ अब ठीक है, अब बताइए। हाँ, क्या कह रहे थे?
3: मैंने कहा कि मेरी भांजी है जिसको मैंने नहीं जोड़ा था उस दिन, दो तीन दिन पहले बताया कि नेहा भगत।
0: हाँ।
3: जी जी जी, उन्हीं का आंसर फर्स्ट आया था इसलिए आपने कॉल किया।
0: जी बिल्कुल, तो बिल्कुल।
3: तो फिलहाल मैं दिल्ली में ही हूँ अभी। अच्छा, आपके इलाज के लिए आया था।
0: अच्छा, तो इलाज हो गया आपका?
3: जी, इलाज तो नहीं हो पाया, फिर भी दिक्कत है थोड़ी सी यहाँ पे।
0: अच्छा, फिलहाल ये मैं कौन सा गाना प्ले करूँ, बहुत कंफ्यूज हूँ, मैं समझ में नहीं आ रहा है।
3: ये लोग सबके सब है ना, अलग अलग सॉन्ग बता रही है।
0: हाँ, इसीलिए दिक्कत है। हाँ, तो आप बता दीजिए।
3: तन्नो बता कौन सा गाना सुनेगी?
1: वही वाला मैंने बोला ना, बरसात।
3: बरसात का बता रही है, कौन सा न्यू आया है कोई सॉन्ग?
1: अभी
0: अब मुझे ऐसे कैसे समझ में आएगा मैं कौन सा गाना प्ले करूँ?
1: दो मिनट,
3: वो सर्च कर रही है। एक मिनट अमन जी,
1: बहुत अच्छा सॉन्ग है।
0: और ये
3: खाया
0: नहीं, जरा जरा
3: एक
0: बहकता है, ये वाला सुना दूं?
3: जरा जरा यानी कि
1: नहीं, जरा जरा नहीं, रुको ना मैं बता दियो।
3: कंफ्यूज हो गई, ये लोग को फोन आया ना, कहती है कि नहीं कोई और, किसी और का फोन आ गया। मैंने कहा नहीं नहीं, सही नंबर लगा है तेरा।
0: हाँ बिल्कुल।
3: ये लो, जब तक आप मैंग से बात कर लो, जरा परेशान हो रहा है।
0: जी मैंग जी, जी जी मैंग जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। नमस्ते नमस्ते, थोड़ा आप नेटवर्क एरिया में आइए प्लीज, अगर आवाज आ रही हो तो।
1: नमस्ते अमन जी।
0: नमस्ते नमस्ते, और मैं बाबू कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए।
1: हाँ, हम भी ठीक हैं।
0: आप लोग गाना सुनते
1: पापा है ना, साथ ही साथ अपने भांजी को भी जोड़ दिया रेडियो हॉटस्टार।
0: चलिए अच्छी बात है ना, आप सभी एंजॉय कीजिए रेडियो हॉटस्टार को। गाना कौन सा सुनना है ये बता दो जल्दी से प्लीज, देर हो रही है बहुत।
3: तन्नो तन्नो जल्दी बता दे गाना कौन सा सुनने की, फटाफट बता, नहीं मिला तो
1: बैरन लगा देते।
3: बैरन बैरन
0: बैरन
3: जी,
0: अब मुझे मिलेगा बैरन। ओके ओके ठीक है, फिलहाल मैं इस गाने को सुना रहा हूँ, एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।
3: थैंक यू,
0: वेलकम।

0: फिलहाल सवाल करता हूँ मैं, एंजॉय कीजिए इस सवाल को।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा,
2: पहली पहली बार मिलाता है यही, सीने में फिर आग लगाता है, धीरे धीरे प्यार सिखाता है यही, हंसाता है यही, यही रुलाता है।
3: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दी दीवाना, बजाते रहो दिल से।

मेरे पास सबसे पहला मैसेज पहुंचा हुआ है यानी कि मनीषा जी का। ओके जी, मनीषा जी के बाद है हमारे ये जाकिर खान जी हैं, जाकिर खान जी हैं, और उसके बाद बिंदिया जी हैं, और आमना खान जी हैं, और दीपक कुमार गायकवाड़ जी हैं, गोपाल परिदार जी हैं, अजय भगत जी हैं, गजानन सरकार जी हैं, जाकिर ओ, ओ,

0: मनीषा शर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है, कैसी हैं आप?
1: नमस्ते मंदी, बढ़िया है।
0: नमस्ते जी, बताइए जवाब क्या है?
1: जवाब है दिल तो पागल है।
0: दिल तो पागल है, बात तो सही है, दिल दीवाना भी होता है।
1: जी,
0: गाना
1: दिल दीवाना होता है तभी तो पागल होता है।
0: और आपको सुनना क्या है?
1: सुनना है हमें ये सॉन्ग है, दीवाना कर रहा है तेरा रूप सुनहरा।
0: दीवाना कर रहा है तेरा रूप सुनहरा। गाना तो अच्छा है, सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए।
1: डेडिकेट है आपकी सुंदरता की मुझे।
0: हाय, थैंक यू सो मच उनके लिए, स्पेशली दिल से धन्यवाद
1: जी, और आपको भी।
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।

0: और ये रहा अगला सवाल।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा, तुम छुपा ना सकोगी मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सकोगी वो अंदाज हूँ, गूंजता हूँ जो दिल में तो हैरान हो क्यों, मैं तुम्हारी ही दिल की तो आवाज हूँ।
2: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दी दीवाना, बजाते रहो दिल से।

0: वेलकम बैक। मेरे पास इस बार सबसे पहले मैसेज पहुंचा है यहाँ सुनील कुमार जी का है, और उनके बाद ये बिंदिया जी हैं, आरजे सोनी जी हैं, और ज्योति खटवाड़े जी हैं, रवि महर जी हैं, अजय भगत जी हैं, और सुनीता गोप जी हैं, और ये सुशील कुमार जी हैं, और आमना खान जी हैं, निशांत रायबोले जी हैं, गोपाल परिदार जी हैं, विष्णु चंद्र जी हैं, एक साहब और भी हैं, नाम तो मुझे नहीं पता चल रहा है क्या नाम है इनका। भाई नाम बता दीजिए, अंत में नंबर है यानी कि 61942। जाकिर खान जी भी हैं तो सीधे कॉल लगाते हैं सुनील कुमार जी को। बड़ा कंफ्यूजन है नाम के लेकर। और राहुल पासी जी भी हैं, इनका भी जवाब अभी आ रहा है। बहुत बहुत वेलकम है सुनील कुमार जी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं
1: जी? बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: आज तो हम बहुत ही अच्छे हैं, और आज तो आप लोग के लिए स्पेशल प्रोग्राम भी पेश किए हैं आरजे सोनी जी के साथ।
1: जी जी जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के जैसा मजा तो आज तक आया ही नहीं था सर।
0: अच्छा, सच में का मतलब?
1: आज जो एंजॉय किया ना, आज जो एंजॉय किया हमने आपका प्रोग्राम भोजपुरी धमाल, तो ये समझ लीजिए एक नया जो है इतिहास रचा गया है आज।
0: ओह माय गॉड, बस हमने तो कुछ भी, हमें तो भोजपुरी बोलने भी नहीं आती है ना उतना ज्यादा। वो जितना भोजपुरी महारानी बोलती है वो तो बहुत अच्छा बोलती है ना, वो तो फराटेदार भोजपुरी बोलती है, हमें तो आता ही नहीं है।
1: वो नहीं आता है, लेकिन देखिए आपको भी आता है, लेकिन क्या है कि वो थोड़ा सा हमको लग रहा है कि उसी एरिया के हैं इसलिए वो ज्यादा बोलती हैं, और आप थोड़ा माना टीचर है ना, तो पहले तो आपको टीचर दे की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर।
0: धन्यवाद,
1: भूल गया था मैं
0: जी, कोई बात
1: जी, तो इसलिए हाँ इसलिए जी।
0: एक्चुअली क्या है ना,
1: पढ़ाते
0: मतलब एक्चुअली क्या है कि हमें भोजपुरी आती है, मैं समझ जाता हूँ बिल्कुल, लेकिन वो बोलने में एक्सपीरियंस नहीं है। मतलब हिंदी में हमेशा बात होती है, हिंदी उर्दू में बात होती है, तो वही आदत सी लगी हुई है, वो यानी कि जबान फिसल जाती थी जब मुझे बोलना था। मैंने बहुत ही मुश्किल से मैंने वो शो किया है उनके साथ मिलकर, लेकिन अच्छा लगा मुझे भी करके।
1: बहुत बहुत बहुत बहुत ही लाजवाब किया आज आपने। और सेम सिचुएशन मेरे साथ ही है, हम देखिए बिहार के होते हुए भी हमारी जुबान से भोजपुरी मतलब लैंग्वेज माने निकलती ही नहीं है, क्योंकि हमने उस परिवेश में माना बचपन से लेके अब देखिए कि उम्र बहुत ज्यादा हो गई है।
0: अच्छा,
1: तो अब हाँ अब सीखना भी मुश्किल लग रहा है मुझे, तो उस परिवेश में ही रहे हम बिल्कुल हिंदू हिंदी भाषी की तरह। जैसे हरियाणा क्षेत्र में रहे तो कम से कम 40 साल हमें हो गए।
0: अच्छा,
1: हो गया यहाँ पे हरियाणा क्षेत्र में जी।
0: ओ माय गॉड, हाँ। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल बताइए जवाब क्या है और गाना कौन सा सुनना चाहेंगे?
1: ये जवाब तो देखिए बातों बातों में मैं जवाब ही भूल गया हूँ, अभी बता रहा हूँ आपको। मैं यहाँ हूँ यहाँ,
0: बिल्कुल। और गाना कौन सा सुनना है?
1: ये गाना है संग संग चलूंगा मैं बनके तेरा सजन।
0: ओके, सुनवा रहा हूँ, एंजॉय कीजिए। और कुछ कहना है
1: जी? धन्यवाद। नहीं नहीं ठीक है जी, अब तो बात होती रहे क्योंकि लंबी बात, और सभी श्रोताओं का भी मौका मिलेगा ना।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, चलिए एंजॉय कीजिए गाने को। धन्यवाद
1: जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद।
0: और जुड़ चुके हैं हमसे मिस्टर ये निक्की परवल मिश्रा जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और हमारे साथ यहाँ पे सुशील कुमार जी भी जुड़े हुए हैं, वेलकम।

0: और रोशनी कुमारी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं और सवाल करते हैं अगला।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा, गोरे मुखड़े से घूंघटा हटाने दे, घड़ी अपने मिलन की तो आने दे, मेरे दिल पे नहीं मेरा काबू है, कुछ नहीं ये तो चाहत का जादू है।
2: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने की बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे। अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं, सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दी दीवाना, बजाते रहिए।

और मेरे पास सबसे पहला मैसेज पहुंचा हुआ है धमाकेदार रोशनी कुमारी जी का। ओके जी, आमना खान जी हैं, आरजे सोनी जी भी हैं, और उसके बाद बिंदिया जी हैं, सोनू गौतम जी हैं, राहुल शुभ जी हैं, रुबीना नाथ जी हैं, बाबूलाल अंजाना जी हैं, अजय कुछ जी हैं, दीपक कुमार गायकवाड़ जी हैं, ज्योति खटवाड़ जी, मनीषा शर्मा जी हैं, सुशील कुमार जी हैं, गजानन सरकार जी हैं, विष्णु चंद्र जी हैं, जागीर खान जी हैं, जीना सिद्दीकी जी हैं, निशांत रायबोले जी हैं, और अजय भगत जी हैं, सुनीता गोप जी हैं, और हमारे यानी कि परवल मिश्रा जी भी हैं, और गोपाल परिदार जी हैं, एक साहब और भी है, नाम तो मुझे नहीं पता है भाई, नाम बता दीजिए, नंबर है N61942। रवि महाराज जी हैं, तो सभी का वेलकम करते हुए कॉल लगाते हैं।

शायद प्रॉब्लम हो सकता है, तो अगर कॉल रिसीव नहीं करना था तो मुझे पहले बताना चाहिए था। फिलहाल अगला कॉल लगा लेता हूँ आरजे सोनी जी को ही। ओ इनका नेटवर्क इश्यू हो गया है। इनका भी कॉल नहीं लग पा रहा है। कोई बात नहीं, और कौन था, आमना खान थी ना? हाँ ठीक है, आमना खान जी को लगाता हूँ मैं एप्लीकेशन से।

ओके शायद कोई बात नहीं, फिलहाल मैं अपने मन से गाना प्ले कर रहा हूँ और इसके बाद से अगला जो गाना मैं प्ले करूँगा उसके बाद मैं अगला सवाल करूँगा, क्योंकि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड को मैंने कॉल लगा लिया और किसी का कॉल नहीं लग पा रहा है। ओके तो कौन सा गाना मैं प्ले कर दूँ, फिलहाल गहरा हुआ ही मैं आप लोग को मैं सुना रहा हूँ, इंजॉय कीजिए।

0: और ये रहा अगला सवाल।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा।
2: उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं, एक कर दूं आसमां और जमीं, कहो यारों क्या करूं क्या नहीं।
3: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दी दीवाना। बजाते रहो दिल से।

0: ओके जी, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं और सबसे पहला तो आया हुआ ज्योति खटवाड़े जी का। ओके जी, राहुल यानी कि सूप जी हैं। ओके राहुल सूप जी हैं और दीपक कुमार गायकवाड़ जी हैं, जाकिर खान जी हैं और यानी कि प्रियंका जी हैं और जीना सिद्दीकी जी हैं और आमना खान जी हैं, रवि मार जी हैं, गोपाल परिदार जी हैं, विष्णु जी हैं, अजय भगत जी हैं, काजल झटका जी भी हैं और यानी कि परवल मिश्रा जी भी हैं और मनीषा शर्मा जी भी हैं। सीधे कॉल लगाते हैं ज्योति जी को। ज्योति जी आज की विनर बनी है, बहुत बहुत बधाई हो आपको। क्या बात है, बन ही जाती है विनर आप।
1: थैंक यू।
0: ओके, तो आप कुछ भी सुन सकती हैं, बताइए क्या सुनना है।
1: जो प्ले टाइटल सॉन्ग है, थोड़ा तुम बदलो थोड़ा हम बदले, एक टाइटल सॉन्ग है। देखो
0: मुझे देखना पड़ेगा, थोड़ा तुम बदलो
1: हाँ थोड़ा हम बदले,
0: थोड़ा हम जरा सा देखना पड़ेगा मुझे, थोड़ा तुम बदलो थोड़ा।
1: नहीं तो कौन सा है वो सुना देना।
0: ओके नहीं, यहाँ पे तौबा तौबा है और थोड़ा तुम बदलो, अच्छा टाइटल सॉन्ग है, ठीक है ओके मिल गया मुझे। आपका गाना आपकी पसंद, बिल्कुल सुनाऊंगा, एंजॉय कीजिए, सुनवा दिया।
1: हाँ
0: धन्यवाद,
1: थैंक यू,
0: वेलकम जी।

आज का आखिरी सवाल करने वाला हूँ, इसके बाद स्पेशल कॉल करूंगा। और आज मैं 10 बजे तक ही हूँ क्योंकि 10 बजे आरजे अखंसा जी का शो आने वाला है और 9:30 बजे उनकी लाइनें खुल जाएंगी।

0: और आज का आखिरी सवाल,
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा। कितना इसको समझाता हूँ, कितना इसको बहलाता हूँ, नादान है कुछ ना समझता है, दिन रात ये आहें भरता है।
2: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे। अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं, सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना। बजाते रहो दिल से।

0: ओके जी, मेरे पास सबसे पहले मैसेज पहुंचा हुआ है यानी कि कविता कुमारी जी का, उनके बाद यानी जीनत सिद्दीकी जी का और आरजे सोनी जी का और बिंदिया जी का, गोपाल परदार जी का, दीपक जी का, आमना खान जी का, राहुल शुभ जी का, मनीषा शर्मा जी का, रवि मोहरे जी का, जाकिर खान जी का, अजय भगत जी का, ज्योति खटवाड़े जी का और ये इनका क्या नाम है यानी इनका नाम है सुनील कुमार जी, अच्छा, और सुनीता गोप जी, अजय को जी। ओके, सीधे कॉल लगाता हूँ मैं यानी कि कविता कुमारी जी को। आपका Hello? बहुत जी ये आपका बहुत बहुत वेलकम है। आपका शुभ नाम?
1: मेरा नाम रविंद्र गोरखपुरी है सर।
0: जी
1: जी रविंद्र सर,
0: रविंद्र गोरखपुरी जी, बहुत बहुत आपका वेलकम है जी। बताइए,
1: मेरा दिल भी कितना पागल है।
0: हाँ ठीक है, और गाना कौन सा सुनना चाहते हैं?
1: दिल दीवाना कहता है कि प्यार कर सर।
0: दिल दीवाना कहता है कि प्यार कर। ओके, ढूंढता हूँ मैं आपका गाना। ठीक है, एंजॉय कीजिए, गाना प्ले कर दिया।
1: थैंक यू सो मच,
0: वेलकम जी।

और स्पेशल कॉल करने वाले हैं, तो आप सब तैयार रहें। और मैं बहुत से दोस्तों को कॉल लगाने वाला हूँ, यानी करीब 10 बजे से पहले, जैसे कि अगला कॉल होगा जाकिर खान जी को। उसके बाद यानी कि सुनीता गोप जी को,

0: गाते हैं जाकिर खान जी को। और 9:30 बज गया है, आरजे आकांक्षा जी का लाइन ओपन किया जा रहा है, अब मैसेज वहां पे भेज सकते हैं आप लोग। बहुत बहुत वेलकम है जाकिर खान जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं, आप सुनाएं।
0: मैं तो एकदम झकास बिंदास फर्स्ट क्लास मजे में चकाचक ग्रंटी के साथ हूँ। ओके, स्पेशल कॉल में आपको किया गया है, तो आज आप क्या सुनना चाहेंगे?
1: पुराना ही सॉन्ग है, जी हाले मस्ती सुना दी।
0: जी हाले मस्ती सुना चाहते हैं, वाह क्या बात है
1: जी सर।
0: ये तो गाना वैसे ही अच्छा है, सुनवाते हैं, एंजॉय कीजिए।
1: अच्छा
0: जी, एंजॉय कीजिए।
1: थैंक यू सर, वेलकम।

0: बहुत बहुत वेलकम है सुनीता गोप जी। और आज मैं नॉर्मल कॉल नहीं कर सकता क्योंकि मेरा मोबाइल चार्ज नहीं है
1: जी।
0: हाँ, इसलिए व्हाट्सएप कॉल ही किया हूँ मैं आपको।
1: और आपने का बहुत बहुत शुक्रिया
0: जी।
1: हेलो।
0: हाँ जी बोलिए। आवाज नहीं आ रही आपकी। आप बिल्कुल आवाज, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या आप बोल रही हैं क्योंकि आवाज कटकट के आ रही है, तो थोड़ा सा नेटवर्क के लिए मैं जी प्लीज। बिल्कुल आवाज ही नहीं आ रही आपकी। हाँ बताइए।
1: हेलो।
0: हाँ हाँ बोलिए
1: सर। ये क्या नाम, जब से देखा है तेरे हाथों का चांद, मैंने देखा नहीं रातों का चांद। एक पिक्चर सर गाना सुना है।
0: जब से देखा है तेरे हाथों का चांद, है ना
1: सर? हाँ है।
0: ओके सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए। धन्यवाद
1: सर।
0: वेलकम।

और आज है आर्जा कांचा जी का वो यानी कि गजले महफिल है, तो उसमें जो भी गाने भेजिए वो यानी गजल वाले गाने भेजने हैं, फिल्मी गाने वगैरह वगैरह नहीं भेजने हैं, चाहे सैड सॉन्ग नहीं भेजने हैं, आज आपको यानी गजल वाले गाने भेजने हैं, तो जल्दी से गजल वाले गाने भेजिए। और जितने दोस्तों ने गाने भेजे हैं उसको मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ।

0: अजय भगत जी आपका बहुत बहुत वेलकम स्पेशल कॉल में, और आज क्या सुनना पसंद करेंगे?
1: आज मैं वही जिस गाने की फरमाइश मैंने डाल के रखी थी।
0: अच्छा
1: जी, वही देखती आंखों से रुखसत ना करो।
0: ओके, सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए।
1: थैंक यू,
0: वेलकम जी।

बिल्कुल आरजे आकांक्षा जी के शो में आप इन निकी गजल वाले गाने की फरमाइश करें और ऐसे किसी गाने की फरमाइश न करें, सिर्फ आज इन गजल महफिल है तो उसका सम्मान करते हुए उस तरह के गाने की डिमांड करें।

0: विष्णु चंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है स्पेशल कॉल में। और क्या सुनना पसंद करेंगे
1: जी? नमस्कार जी।
0: नमस्कार,
1: बढ़िया है। हाँ जी, एक गाना तो है,
0: बता दीजिए।
1: डोली लेके कोई आता नहीं।
0: अच्छा,
1: ये गाना है।
0: डोली लेके कोई आता नहीं। ओके
1: ठीक।
0: डोली लेके
1: कोई आता नहीं।
0: डोली लेके यहाँ। अच्छा, सुनाते हैं, शायद ये गाना है।
1: ठीक है,
0: ओके।

अरे भाई आप लोग जो गाना भेज रहे हैं ना वो यानी कि कव्वाली भेज दिए, हम कह रहे हैं गजल वाला आज दिन है यानी गजल भेजना है। तो भाई इन विष्णु चंद्र जी और निशांत साहब बोले जी आप दोनों का गाना मैं वहाँ से रिजेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग आज गजल भेजिए, सभी से कहूँगा गजल गजल गजल, नॉट कव्वाली नॉट अदर सॉन्ग। ओके

0: जी राहुल सूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्पेशल कॉल में। और बताइए आज क्या सुनना पसंद करेंगे?
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार, बताइए।
1: आप ना एक सॉन्ग चला देना, वो
0: बता दीजिए।
1: हसी हो जवा हो, बेवफा हो तुम, बेवफा हो।
0: ओ माय गॉड, बेवफा हो तुम, ऐसा क्या हो गया भाई?
1: मुझे अच्छा लगता है गाना।
0: ओके, सुनवाएंगे। ओके, एंजॉय कीजिए गाने को।
1: धन्यवाद, थैंक यू जी।

0: लेकिन मेरी सुंदरता की मूर्त बिल्कुल बेवफा नहीं है, वो तो बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छी है, मतलब क्या बोले, जितनी तारीफ करें उतनी ही कम है। फिलहाल अगला कॉल लगाते हैं हम सर्वेश भगत जी को। सर्वेश भगत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पेशल कॉल में।
1: हेलो सर।
0: जी जी बताइए कैसे हैं आप?
1: ठीक है सर।
0: और क्या सुनना पसंद करेंगे आज?
1: फिल्म है प्यार प्यार। एक तेरे चेहरे पे प्यार आया।
0: जी मैं सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए। वेलकम
1: जी। थैंक यू।

0: बिल्कुल एक तेरे ही चेहरे पे प्यार आया, ऐसे रवि महर्जी को कॉल लगाता हूँ मैं, और टाइम मिलेगा तो और कॉल लगा लूंगा।
1: हेलो,
0: बहुत बहुत वेलकम है स्पेशल कॉल में रवि महर्जी, बताइए क्या सुनना पसंद करेंगे आज?
1: बहुत बहुत धन्यवाद, कैसे हो सर जी आप?
0: बहुत ही अच्छे हैं जी,
1: और शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको।
0: थैंक यू सो मच, थैंक
1: यू आदरणीय अमन सर जी,
0: थैंक यू सो मच। तो बताइए,
1: तो सुनाइए आप ही। आप वैसे गाने तो 3-4 भेजे थे मैंने, वैसे इस दिल में नहीं है कोई, धड़कनों में नहीं है कोई, धड़कन में नहीं है कोई, ये सुनवा दोगे तो बड़ी अच्छी बात है।
0: सुनवा दिया,
1: लिंक भेज चुका हूं।
0: सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए। धन्यवाद,
1: थैंक यू सो मच।

0: एक फीडबैक भी है, इसको मैं शामिल करता हूँ। बेचारे
1: अमन जी, आपका प्रोग्राम मैं सुन रहा था कि तीन बार पत्नी ने मुझे खाने खाने का बोल दिया, पर मुझे सुना ही नहीं आया। तब उसने जोर से कहा खाना खा लो, तो मैंने कहा इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही है खाना खाने का, तो बोल रही तुम्हें कुछ सुनाई नहीं आ रहा, मैंने तीन बार बोल दिया। तो भाई मैंने बोला मुझे तो कुछ सुनाई ही नहीं आया, अच्छा मुझे तो सिर्फ रेडियो हॉट स्टार सुनाई आ रहा है।
0: ओह माय गॉड, थैंक यू। फिलहाल अगला कॉल लगा लेते हैं अनिल जी को। स्पेशल कॉल में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू सर, नमस्कार।
0: नमस्कार, और कैसे हैं?
2: बस बढ़िया सर, अपना बताइए।
0: बहुत अच्छे हैं। तो आज क्या सुनना पसंद करेंगे?
2: आज प्रेम की नैया है राम के भरोसे।
0: प्रेम की नैया है, प्रेम की नैया है राम के भरोसे। ओके
2: जी, जी।
0: देख लेता हूँ।
3: बहुत अच्छा है, सब पसंद करेंगे।
0: तो मैं सुनवा रहा हूँ, आपकी पसंद करिएगा ना, एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।
2: थैंक यू सर।

ये गाना मैंने इसलिए प्ले किया हुआ है कि आज बहुत जगह हर जगह यानी कि मटकी फोड़ का आयोजन किया गया है, और इसलिए और आप सबको एक बार फिर से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और टीचर्स डे की भी हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं फिर कल शाम 6 बजे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, सब बाय बाय।

बड़ा

0: देखो हाँ मायके नहीं तू मत मायके मायके मत जाइयो।
1: ए टोनी फर्नांडिस

0: हाँ तो नैनों में
1: बिंदिया है,
0: माथे पे
1: बिंदिया है,
0: तो बालों में
1: गजरा है,
0: आँखों में
1: गजरा है।
0: ओहो,

0: नहीं बताऊंगी,
1: तुझे दिल की बात बता दूं।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं

0: क्या हुआ?
1: हाय, गम का फसाना बन गया अच्छा।
0: अच्छा जी,
1: एक बहाना बन गया अच्छा।
0: अच्छा।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 12 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: चकाचक हिरलो पान चबा
1: आ
0: आहा।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 2 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

तुम अपना वादा भूल गए प्रकाश। तुमने कहा था कि हमारे प्यार की अधूरी कहानी अगले जन्म में जरूर पूरी होगी। बोलो प्रकाश, कहा था ना? मगर वो कहानी आज भी अधूरी है। मैं आज भी इस वादी में तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। क्या तुम मेरे पास नहीं आओगे? जवाब दो प्रकाश, क्या तुम अपना वादा पूरा नहीं करोगे? बोलो प्रकाश, नहीं आओगे?

0: करो ये गाना। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों तड़पाते हो बाबू?
1: मैं तुम्हें क्या तड़पाऊंगा, मैं तो खुद तड़प रहा हूं।
0: तुम यहां से चले क्यों नहीं जाते?
1: चला जाऊं कहां, चला जाऊं कैसे, चला जाऊं? ये तो वादी है जहां पर हम दोनों की मौत हुई थी, ये तो वो धरती है जहां पिछले जन्म के दो प्रेमी दफन है, ये तो वो जगह है जहां पर मरने से पहले हम दोनों ने जन्म जन्म तक साथ निभाने की कसमें खाई थी। तुम ही बताओ इस धरती को छोड़कर कहां चले जाऊं, कैसे चला जाऊं?
0: तुम्हारी बातें मेरी समझ में कुछ भी नहीं आती है। आखिर तुम चाहते क्या हो बाबू?
1: मैं तुम्हें वो कहानी याद दिलाना चाहता हूं जो चंदनगढ़ के राजमहल से शुरू हुई लेकिन पूरी होने से पहले खत्म कर दी गई।
0: ये झूठ है, मेरा उस कहानी से क्या संबंध है?
1: संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। अगर तुम ना होती तो वो कहानी कभी शुरू ना होती। मेरा विश्वास करो, मुझ पे यकीन करो रत्ना, आज भी चंदनगढ़ के राजमहल में तुम्हारी तस्वीर लगी है।
0: तस्वीर?
1: हाँ।
0: मेरी तस्वीर?
1: हाँ।
0: नहीं नहीं बाबू, तुमसे जरूर कोई भूल हुई है, वो तस्वीर किसी और की होगी।
1: रत्ना, चंदनगढ़ यहाँ से ज्यादा दूर तो नहीं, तुम चलकर अपनी आंखों से देख लो और चलकर खुद ही फैसला कर लो। आज देखो देखो, ये चंदनगढ़ का राजमहल है, इसे देख के कुछ याद आया? जानती हो पिछले जन्म में तुम यहाँ की राजनर्तकी थी और मैं यहाँ का राजगायक, इसी शाही बाग में हम मिला करते थे जहां से हमारी मोहब्बत शुरू हुई थी। कुछ याद आया? कुछ भी नहीं?
0: नहीं।
1: आओ आओ मेरे साथ।

0: ये वही राज दरबार है। वही दीवारें हैं, वही सतून है, इन पर की गई नक्काशी। बरसों बीत गए, कुछ भी तो नहीं बदला। इसे गौर से देखो, पहचाने की कोशिश करो। ये वही राज दरबार है। कुछ याद आया? आओ आओ मेरे साथ।
1: ये दीवाने खास है, जहां पर नृत्य और संगीत की महफिलें जमा करती थी। याद करो, ये वही जगह है जहां पहली बार तुम्हारा हमारा सामना हुआ था। यहां पर महाराज बैठा करते थे और चारों तरफ दरबारी। उस तरफ गुरुजी का सिंहासन था और उस तरफ उस्ताद बंदे अली खां। और तुम गौरी के साथ मेरे बिल्कुल सामने बैठी थी। और जैसे महाराज का इशारा हुआ, मेरी उंगलियां सितार पर मचल उठी और तुम्हारे पांव बिजली की तरह थिरकने लगे।

ये वही जगह है जहां हम रहा करते थे। उस तरफ मेरा कमरा था और इस तरफ तुम्हारा। ये देखो,

0: मैं रत्ना
1: रत्ना

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 a.m. in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: हे अरे हे सूरदास का औलाद, तो अगर सुनाई नहीं पड़ा था हम कहा कहा थे, हम कहा ठहरा करने को कहा गया गया।
1: हम ये बकवास सुनने नहीं आए हैं, हम यहाँ के राजा हैं और अब हम लौट कर आए हैं, हम राजा की तरह रहेंगे।
0: अरे हाई देखो इकालिया गैंडा के राजा की तरह रहेंगे, यानी अब हम तहार पर जा की तरह रहिए।
2: गोविंदा,
0: अरे गोविंदा नहीं जी, हवलदार बोलिए आप।
2: हवलदार साहब, लगता है दो डंडे देने ही पड़ेंगे।
0: हाँ ऐसा कहा,
3: दे दीजिए।
0: अरे रजवा का औलाद, इन्हें आओ रे, पुलिस का भाका नहीं समझता है क्या रे? हम पुलिस वालन का हंसना मना है, चलिए। अरे बगुआ
2: गोविंदा,
0: और हम तो के हुकुम देते हैं ई दारू का अड्डा बंद कर दे।
2: मगर दारोगा जी, हम दिन भर तो हर ड्यूटी बजाई, मगर रात को ये धंधा
0: बंद। खड़ा करो, बंद। हम कह दिया सो कह दिया, अरे दिन का बात नहीं है, रात का बात नहीं है, शराब पीना बुरी बात है तो शराब बंद का
4: बंद। लेकिन गोविंदा, नहीं नहीं नहीं हवलदार, नहीं नहीं नहीं दरोगा साहब, कल तो शिवरात्रि का दिन है।
0: अब अरे शिवरात्रि के दिन का बात हम कहाँ कहा थे, अरे कल तो छुट्टी का दिन होते हैं, भांग पिया जाते, का पिया जाते।
5: जो चिराग हमने जलाए वही चिराग हमारा घर जलाने की कोशिश कर रहे हैं।
6: इससे पहले कि चिराग एक भड़कती आग बन जाए, उसे बुझा देना ही शुभ नीति है।
5: जरा हम भी तो देखें उनकी लौ में कितनी गर्मी है।

0: हाय राम, कहा हुआ रे गोविंदा?
1: हो तेरा बिटवा जवान होई गवा, हो तेरा बिटवा जवान।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 4 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

लो कर लो बात। अरे बाबूजी ऐसी इंग्लिश आवे दैट आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड। यू सी सर, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन लाफ इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज ए वेरी फनी लैंग्वेज। भैरो बिकम बैरन एंड बैरन बिकम भैरो बिकॉज दे माइंड द वेरी नैरो।

0: जान जा। आई गो आई गो आई गो, ये क्या हो गया तेरे पीछे दिल ये तबाह हो गया। जी में आता है कि तुझे देखूं भी नहीं, पर क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया है, क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया। आई गो आई गो आई गो, ये क्या हो गया।
1: आई गो आई गो आई गो, ये क्या हो गया।
0: आई गो आई गो आई गो, ये क्या हो गया।
1: आई गो आई गो आई गो, ये क्या हो गया।
0: आई गो आई गो आई